देखिए, बात तो 100% सही है, ये जिंदगी लंबी नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए। कभी सोचा है आपने कि सब कुछ अगर इतना ही आसान हो जाता तो भला हम मजबूत कैसे बनते? अगर हर मोड़ एकदम स्ट्रेट यानी सीधा मिलता तो रास्तों की पहचान कैसे करते? अगर कभी ठोकर नहीं लगती तो संभलने का और फिर चल पड़ने का हुनर कैसे आता? अगर ये दिल कभी टूटता नहीं तो उसे जोड़कर दर्द को भुलाना हम कैसे सीख पाते? और हालात अगर कभी बदलते नहीं, हमेशा एक से रहते, तो आगे बढ़ने कुछ करने की वजह क्या बचती? So here I want to say कि शायद यही जिंदगी है, जहां टूटना जरूरी है फिर से जोड़ने के लिए, गिरना जरूरी है संभलने के लिए, और जहां कभी कभी बिखरना भी जरूरी है फिर से निखरने के लिए।

और रीत तो देखिए वैसे हमेशा से ही ये रही है कि अगर बेटी घर में पैदा हो जाए तो पहले तो अफसोस मनाओ और फिर जब थोड़ी बड़ी हो जाए तो घर के कामकाज में लगा दो, क्योंकि करना क्या है उसे पढ़ा लिखा कर, आगे जाकर शादी ही तो करनी है, घर बच्चे और इनकी छोटी छोटी जिम्मेदारियां ही तो संभालनी है। मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद क्या, आई एम 100% श्योर कि आप में से किसी की भी ऐसी सोच तो बिल्कुल नहीं होगी। बेटियां उतनी ही लायक और उतनी ही खास होती हैं जितने की हमारे बेटे, और उनकी इसी अहमियत को समझते हुए भारत सरकार ने शुरुआत की है सुकन्या समृद्धि योजना की, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों के भविष्य को सेफ और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की ओर काम किया जा रहा है। बेसिकली ये एक बचत योजना है जिसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। तो होता कुछ यूं है कि 10 साल से कम उम्र की बेटी के माता पिता या फिर कानूनी गार्जियन अभिभावक इस योजना के तहत खाता खोलते हैं और फिर एक साल में कम से कम 250 रुपए या फिर ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। खाता खोलने की तारीख से लेकर 15 सालों तक इसमें निवेश करना जरूरी होता है। हालांकि खाते की मैच्योरिटी आपको 21 साल के बाद मिलती है। अच्छी बात यह भी है कि आपको मिलने वाला इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है। बच्ची 18 साल की हो जाए या फिर 10वीं की परीक्षा उसने पास कर ली हो, तब आप 50% यानी आधी जमा राशि निकाल सकते हैं। जरूरी दस्तावेजों में बिटिया के पास जरूर होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो बिटिया के अभिभावक का होगा। और फिलहाल मैं आपको सुनवा रही हूँ ये खूबसूरत गाना, और इसके बाद आज के सवाल का जवाब भी तो है बताना।

0: ने दिया आज के सवाल का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो संतोष सक्सेना मुंबई से सबसे पहले सवाल का जवाब सही इन्होंने भेजा। कृष्ण कुमार गुप्ता महोबा यूपी से, सत प्रकाश सनोठिया रोहिणी से, नवीन भाटिया नई दिल्ली से, मनोहर लाल गांधी विजयनगर गाजियाबाद से, मनीषा साखर दांडे जबलपुर मध्य प्रदेश से, सईद अब्बासी बुलंदशहर से, जयप्रकाश दुबे शिवाजीनगर से, राजा आर दिल्ली से, अनु बरजात्या जी मुंबई से, मधु किरण दिल्ली से, राजेंद्र जटोलिया नांगलोई दिल्ली से, हेमा गुरुग्राम से, सोनी मुंबई से, मृदुला जोशी पुणे से, राजेश कुमार दिल्ली मोहन गार्डन से, कैलाश शर्मा गुरुग्राम से, निशा भिवानी हरियाणा से, प्रकाश गोगिया राजेश खेतू और ललित फरीदाबादी साहब ने भी आज के सवाल का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा। तो आज का सवाल था कि आकाशवाणी के तहत विविध भारती सेवा की शुरुआत कब हुई थी। और इस सवाल के सही जवाब के साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर हमारे साथ अरुण जी। गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग
0: जी। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे।
1: मैडम बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा हो गया।
0: अच्छा बातें हम और करें आगे, इससे पहले हमारे लिसनर्स को सही जवाब तो बता दीजिए।
1: मैडम इसकी विविध भारती सेवा की शुरुआत जो हुई थी 3 अक्टूबर 1957 से, ये मुंबई स्टेशन से स्टार्ट हुई थी।
0: जी बिल्कुल, जोरदार तालियां आपके लिए। और इसी के साथ ये बताइए कि एफएम गोल्ड से रिश्ता कितना पुराना है?
1: मैडम अब मैं एग्जैक्टली तो बता नहीं सकता, लेकिन कई सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसके साथ।
0: अच्छा, कैसा फील करते हैं?
1: बहुत अच्छा लगता है। मतलब एफएम गोल्ड जो है ना, ये तो खजाना ही है, सच में गोल्ड ही है। इसमें जो एक्चुअली आप सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ कि एक तो इसमें जो है ना गाने पुराने पुराने जो सुनने को मिलते हैं
0: जी,
1: मतलब वो गोल्डन एरा के गाने सुनने को मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम एफएम गोल्ड।
0: बिल्कुल।
1: और जो इन्फॉर्मेटिव होता है आपके, जो आपका प्रोग्राम मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, थैंक यू सो मच सर।
1: सुबह ऑफिस जाते वक्त मैं ही सुनता हूँ आपका प्रोग्राम।
0: अच्छा अच्छा, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: मैडम वैसे तो सारे गाने किशोर दा के बहुत ही अच्छे हैं
0: जी,
1: लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा गाना जो है प्रेम पुजारी मूवी का गाना है
0: जी,
1: बर्मन दादा का कंपोज किया हुआ, किशोर दा का गाया हुआ, लेना होगा जन्म हमें कई कई।
0: ओके, बहुत ही खूबसूरत गाना है। कुछ खास याद जुड़ी हुई है, क्यों पसंद है ये गाना थोड़ा सा बताइए।
1: बस वो दिल को छू जाते हैं मैडम। एक्चुअली वाइफ के साथ जब मैंने डेटिंग करनी शुरू की थी,
0: वाओ,
1: तो वो तब से यादें जुड़ी हुई है।
0: ओके, तो आप ही हैं हीरो इस गाने के। अच्छा, ऑफिस जा रहे हैं क्या अभी? रास्ते में है तो फिर दो लाइनें गुनगुना दीजिए, फिर मैं सुनाती हूँ किशोर दा की आवाज में आपको, लेकिन आपकी आवाज में भी तो सुन ले हम ये गाना, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए।
1: फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी।

क्या बात है सर, बहुत ही शानदार आपने गाया और बहुत बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना प्यार लुटाने के लिए एफएम गोल्ड पर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. तो ये थे अरुण जी हमारे साथ जुड़े, बहुत ही अच्छी बातचीत इनसे हुई और साथ ही आज के सवाल का जवाब भी इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल सही बताया. और इसी के साथ दोस्तों, म्यूजिकल दिल लगी का सफर आज के लिए बस इतना ही. मैं मिलूंगी आपसे ठीक 10:30 बजे. दिल का मेल बॉक्स खुला रहेगा और रहेगा आपका इंतजार. फिलहाल सुनिए अरुण जी की पसंद से ये खूबसूरत गाना किशोरदा की आवाज में.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2025 से 2029 के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोक

0: लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
1: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान की ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि 1947-48 के युद्ध में पीरू सिंह का अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदा अमर रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. In a social media post, Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue the conversation on boosting India-Italy friendship.

0: दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ होने वाली बैठक को लेकर बेहद उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात्रि भोज पर मिलने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर इस दौरान अपने विचार साझा किए। एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कल शाम रोम में मिले गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए इटली में रहने वाले भारतीय समुदाय का धन्यवाद किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहन स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
4: हैं।
0: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री रूबियो कोलकाता, नई दिल्ली, आगरा और जयपुर जाएंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया है कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा अमरीका के विदेश मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। क्वाड समूह में भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की 2 दिन की यात्रा पर कल रात पेइचिंग पहुंचे। इस दौरान श्री पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ वार्ता करेंगे। श्री पुतिन की ये यात्रा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा संपन्न होने के 1 सप्ताह से भी कम समय में हो रही है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। श्री पुतिन की ये यात्रा वर्ष 2001 में हस्ताक्षरित चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। नाइजीरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभियान में इस्लामिक स्टेट के 175 आतंकवादी मारे गए हैं। नाइजीरियाई सेना के प्रवक्ता समाइल उबा ने कल कहा कि अभियान के दौरान संयुक्त हमलों में चौकियों, हथियार डिपो, रसद केंद्रों, सैन्य उपकरणों और आतंकी गतिविधियों को मदद देने वाले वित्तीय नेटवर्क के मुख्यालयों को नष्ट किया गया। कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 136 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री रोजर काम्बा ने ये जानकारी दी। कांगो के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार देश में 543 संदिग्ध मामले और 32 पुष्ट संक्रमण दर्ज किए गए हैं। पड़ोसी देश युगांडा में 2 मामलों की जानकारी मिली है। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में भारतीय सहायक उच्चायोग के एक सहायक सुरक्षा प्रोटोकॉल अधिकारी कल सुबह खुलशी इलाके में दूतावास परिसर में मृत पाए गए। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 35 वर्षीय नरेंद्र के रूप में हुई है। वे हरियाणा के रहने वाले थे और चट्टोग्राम स्थित भारतीय दूतावास में कार्यरत थे। दूतावास कर्मियों ने नरेंद्र के कमरे से कोई जवाब न मिलने पर पुलिस को सूचित किया था। पुलिस ने बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए चट्टोग्राम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुर्दाघर भेज दिया गया है। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सूडान के मध्य क्षेत्र में एक व्यस्त बाजार पर ड्रोन हमले में 28 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। पश्चिम कोदोफान प्रांत के घुबैश शहर के बाजार को उस समय निशाना बनाया गया जब वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। समूह ने हमले के लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि सूडानी सेना ने इन आरोपों से इंकार किया है। टेक कंपनी गूगल जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई नए टूल और सिस्टम पेश करने जा रही है। इनमें जेमिनी स्पार्क नाम का एक नया पर्सनल एआई एजेंट भी शामिल है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good morning, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today.

रूठा रूठा सा लगता है। कोई तरकीब बता मनाने की? हम खुद को गिरवी रख देंगे तो कीमत तो बता मुस्कुराने की। जी हाँ, मुस्कुराते रहिए और उसके लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार बैठे हैं। नमस्कार, ट्यून कर चुके हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज हूँ आपके साथ, करेंगे ढेर ढेर ढेर सारी बातें और साथ ही आपकी फरमाइश के गीत भी सुनेंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी करनी होगी थोड़ी मेहनत। fmgoldairdelhi@gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज। आप भेजेंगे 9868686753 पर। और इसके साथ ही टेस्ट होगी आपकी फिल्मी नॉलेज भी, क्योंकि एक बार फिर मैं लेकर आ गई हूँ एक खूबसूरत सा म्यूजिक पीस। जी हाँ, एक सुपर हिट गाने का प्रिल्यूड है ये और इंटरल्यूड भी है, और गाने की एंडिंग में भी आप इसे सुनते हैं, मतलब कि गाना पहचानने के लिए ये म्यूजिक पीस काफी है। तो फिर क्यों करनी है देर, जल्दी से सुन लेते हैं ये म्यूजिक पीस। कानों और दिमाग को लगाइए काम पर और रेडियो पर।

जी हाँ, तो उम्मीद है कि ये गाना आपने जरूर जरूर जरूर पहचान ही लिया होगा। तो जल्दी से लिख भेजिए गीत के बोल और फिलहाल एंजॉय कीजिए ये पहला गाना प्रोग्राम का, जिसकी फरमाइश हमारे पास पहले ही आ गई थी। कहाँ से ये सुनिए, दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई ने भेजी थी इस गाने की रिक्वेस्ट मेरठ कैंट से। सुनते हैं।

बिल्कुल, गले लगाइए हर खुशी को और साथ में हमें मेल और व्हाट्सएप मैसेज भी करते रहिए। और उस धुन को अगर आपने पहचान लिया है जो मैंने आपसे कुछ ही देर पहले सुनाई थी आपको, तो गाने के बोल यानी मुखड़े के बोल जरूर आप हमें लिखकर भेजिए, वो भी जल्दी से जल्दी। चांद हो तुम मेरी रातों का, तुम्हारे बिना ये अंधेरा गहरा है, तुम्हारी ही रोशनी से मिलता है सुकून, वरना बेचैनियों का पहरा है। तुम साथ हो तो हर लम्हा हसीन है, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। तुमसे ही जुड़ी है हर खुशी मेरी, तुमसे ही मेरा हर ख्वाब पूरा है। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने ये ईमेल भेजा है हमें और एक खूबसूरत से गीत की फरमाइश भी लिखकर भेजी है, जिसे कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पूरा कर दें। अगला मैसेज हम खोल लेते हैं सुनील पाठक जी का, और इन्होंने भी एक फरमाइश लिखकर भेजी है, साथ ही नाम लिखे हैं कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक के साथ अनारकली बाजार जगराओं से ये ईमेल इन्होंने हमें भेजा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज ढूंढती हूँ मैं जिसमें लिखी हो कोई अच्छी सी शायरी या कोई अच्छी बात। आप तो जानते ही हैं, एक मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट बिल्कुल उसी की तरह अट्रैक्ट करते हैं वो ईमेल और वो मैसेजेस मुझे, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, खूब अच्छी सी शायरियाँ लिखी होती हैं, या फिर कोई भी ऐसी बात जिसे पढ़ने में ना दिल खुश हो जाए, एनर्जी आ जाए, एकदम से लगे कि हाँ भाई ये हुआ, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं मैसेज। और अभी तो मुझे फिलहाल सभी मैसेजेस में आज के सवाल का जवाब ही नजर आ रहा है, जिसे मैं अभी तो रिवील नहीं कर सकती हूँ। एक ईमेल आ गया है, बीत गई तारों वाली हसीन रात, अब सूरज ने फैलाई है अपनी बात, एक प्यारी सी सुबह आई है साथ, बोलो गुड मॉर्निंग और जी लो दिन।

खास। हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियाँ ये नया दिन कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। आओ आज मिलकर एक सुलह कर लेते हैं, दिल तुम रख लेना और हम तुम्हें रख लेते हैं। क्या बात है, दिल खुश कर दिया अनु जी आपने, वाकई। अनु बड़जात्या, शमशुल खान, अनुराज बेनारा के साथ मुंबई से सीधा ये मैसेज आया है हमारे पास और वाकई बहुत अच्छा लगा। अगला मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है मुल्लापुर दाखा से। राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और शुभचंद्र ने मिलकर ये ईमेल हमें भेजा है और लिखा है कि जिंदगी मिल के बिताएंगे, हंसते हंसते हर गम भुलाएंगे जब तक है दम में दम। बिल्कुल जोश ऐसे ही बनाए रखिए, हम आपके साथ शामिल हैं। और व्हाट्सएप मैसेज का भी हम रुक कर लेते हैं। अब तो लिखा है भाई कि नाज जी नमस्कार, देखो जी आप सवाल तो पूछ लेते हो पर जवाब शामिल नहीं करते, ये बात तो बड़ी गलत है। गलत तो है, माफी के साथ मैं इस मैसेज को शामिल कर रही हूँ। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने ये मैसेज हमें भेजा है। नाम शामिल नहीं किया, अब इसकी भरपाई कैसे की जाए? ऐसा करते हैं, आप ही की फरमाइश पूरी कर देते हैं, कैसा रहेगा? नाराजगी दूर हो जाएगी ना, तो ठीक है। एक बड़ा ही खूबसूरत गाना इन्होंने लिखकर भेजा है, फिल्म है रोटी, किशोर दा और लता जी की मीठी आवाज में है ये गाना, बहुत ही चुलबुला बहुत ही खूबसूरत गाना है, चलिए सुनते हैं और बोधराज जी की नाराजगी को दूर कर देते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जी हाँ, यही है वो म्यूजिक पीस जिसे आपको सुनकर पहचानना है। और एक बात बताऊं आपको, ये कल वाला म्यूजिक पीस नहीं है उग्रसेन यादव जी। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं दोबारा वही ट्यून बजाऊंगी, वही सवाल पूछूंगी? मैं अपने मूल सिद्धांतों से भटक नहीं रही हूं, जैसा कि आपने लिखा है। बता दूं कि ये बिल्कुल अलग गाना है। कल मैंने जो धुन आपको सुनाई थी वो थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से, और गाना था पास वो आने लगे जरा जरा, याद आया? कल ये धुन मैंने आपको सुनाई थी।

मुझे दूसरी धुन, जरा ध्यान से सुनिए और जल्दी से जवाब लिखकर भेजिए। और अगला मैसेज आया है, नाम नहीं लिखा है इसमें, लिखा है दिनेश चौहान, बाबूराम जयपाल, खुदा बख्श खलीफा, बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार के साथ गांधी चौक बाड़मेर से आया है ये मैसेज और लिखा है, नाज शेख साहिबा जी, आपकी आवाज में छुपा है कोई मीठा सा अफसाना, सुनकर जिसे दिल मेरा हो जाता है पूरी तरह दीवाना, जब भी आप धीरे से मेरा नाम बोलते हो यकीन मानो आप इस धड़कते हुए दिल को जीत लेते हो, कोयल की कूक भी आपके आगे अब फीकी सी लगती है, आपकी हर एक बात सीधे रूह में उतरती है, खामोश सुबह में जैसे कोई सुरीली सी बांसुरी बाजे, आपकी आवाज का जादू मेरे कानों में हर पल साजे, और आपकी आवाज पर हमें बड़ा नाज है। और इस मैसेज को पढ़ते पढ़ते मुझे ये एहसास हुआ कि ये मैसेज कल भी आया था ना, तो वही कॉपी पेस्ट कर दिया, ये क्या बात हुई, अब मैं नाराज हूं। कोई बात नहीं, अगले शो में अगली बार कल नया मैसेज लिखिएगा नए आरजे के लिए। और अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं जल्दी से, दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, देख अब वो भी उतर आया अदाकारी पर। जरा जरा जरा नजरे इनायत मेरे मैसेज पर भी कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट भेजी है व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष ने, और मैंने देखिए आपकी रिक्वेस्ट को सराखों पर रखा है और आपके मैसेज को शामिल भी कर लिया है। अगला मैसेज हम शामिल करेंगे जल्दी से, क्योंकि घड़ी जो है ना बहुत तेजी से भाग रही है, और कमाल की बात देखिए आज भी मेरी नजर घड़ी पर ठीक 10:52 पर गई है। इत्तेफाक ही है, लेकिन बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है। जिंदगी एक फन है अपने अंदाज में गवाने का, ओके, और साथ ही प्लीज के साथ अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है रवि, लता और प्रिया ने, विनिशा भीन के साथ है भिलाई से ये ईमेल हमारे पास आया है। और सईद अब्बासी साहब लिख रहे हैं कि नाज ने अपनी जानकारियों का पिटारा खोला है, हमने भी दिमाग के घोड़े दौड़ाकर जवाब खोज निकाला है और एफएम गोल्ड को भेज दिया है, देखकर नाज के चेहरे पर मुस्कान आ गई मगर हमारा नाम पढ़ने में कतरा रही है, खुदा सलामत रखे, नाज को हम दुआ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुआओं के लिए, और मैं नहीं कतरा रही हूँ आपका नाम पढ़ने से और ना ही आपका मैसेज शामिल करने से। सईद अब्बासी साहब, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी के साथ पूरा परिवार इस ईमेल में शामिल है। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा सांस लेती हूँ, और वक्त नहीं है, सांस बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं। फिलहाल जल्दी से एक मैसेज और मैं शामिल कर रही हूँ। खुशी को मुट्ठी में बांधना चाहा तो डर ने धीरे से दरवाजा खटखटाया, जो अपना था उसे खोने का भय आया और मन ने खुद ही दुख का जाल बनाया। राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, चारू जटोलिया के साथ ये मैसेज आया हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चलिए अब चूंकि वक्त बहुत कम बचा है तो मैं जल्दी से आज के गाने के बारे में आपको बता देती हूं। गीत के बोल ज्यादातर लिसनर्स ने लिख भेजे हैं और बिल्कुल सही लिखकर भेजे हैं। जी हाँ, ये सॉन्ग है 90s की सुपर हिट मूवी और सुपर हिट और एवरग्रीन सॉन्ग में से ये एक है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लेकिन मुझे पहले से मालूम था कि आप नहीं करेंगे मुझे निराश और दे ही देंगे बिल्कुल सही जवाब। शामिल करती हूँ आप सभी के नाम, उससे पहले जल्दी से फटाफट से इस ट्रैक से जुड़ी कुछ खास बातें बता दूं। 1994 में आई थी खुददार मूवी, म्यूजिक था द ग्रेट अनु मलिक साहब का, स्क्रीन पर दिखी गोविंदा और करिश्मा कपूर की सुपर हिट जोड़ी और ये खूबसूरत बोल निकले थे नन अदर देन राहत इंदौरी साहब के जहन और उनकी कलम से। वैसे तो इस मूवी का हर गाना हिट था लेकिन स्पेशली ये सॉन्ग कुछ अलग ही था। अभी तक ये हमारी प्लेलिस्ट और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, देर नहीं करूंगी वरना आप और ज्यादा नाराज हो जाएंगे मुझसे। मधु बाला तिलंग कोटला दिल्ली से, ताज मोहम्मद अंसारी लक्सर हरिद्वार से, विजय नागर पहलवान बाजार सीताराम से दिल्ली में ये कोई जगह है, मनोहर लाल गांधी विजयनगर गाजियाबाद से, फारूक अली खान, फैजी फराज फरहीन

नौर यूपी से, सुभाष गुप्ता किराड़ी दिल्ली से, चारू जटोलिया दिल्ली, नांगलोई से, आफताब अंसारी गंज डुडवारा यूपी से, इतने नाम तो मैंने लिख लिए हैं और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि कई नाम अभी भी मुझसे छूट गए होंगे। उन सभी से हाथ जोड़कर माफी। और साथ ही ये खूबसूरत ट्रैक अब मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज छोड़कर मत जाइएगा। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा और उसके बाद वापस लौट आइएगा, कार्यक्रम लेकर हाजिर रहूंगी तस्वीर, ठीक है।

0: क्या हमारा भी मैसेज शामिल होगा?
1: जी बिल्कुल होगा। धर्मेंद्र छीपा जी, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार के साथ ये मैसेज आया है भोपालगढ़ राजस्थान से। और देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा नाम मैं शामिल कर सकूं, तो एक मैसेज तो मुझे जरूर और कोई शामिल करना होगा। इंदिरा नगर भवरपुर छत्तीसगढ़ से आया राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन का उन्होंने भी दिया बिल्कुल सही जवाब, और यही था वो गाना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

0: और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से बंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, later today. He expressed hope that the

Namaskar, suswagatam, assalamualaikum and have a grand welcome by me, आपकी होस्ट और घुमक्कर दोस्त नाज। ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और जहां के स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त टाइम हुआ है 11:11 और 33 सेकंड। एंड एज यू नो ऑलरेडी कि ये समय है सैर सपाटे का, क्योंकि ये समय है हमारी खास पेशकश तस्वीर का। तो खूबसूरत गानों से सजी तस्वीर की आज की प्लेलिस्ट के साथ मैं हूं पूरी तरह से तैयार, लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए, आज मैं करवाने वाली हूं आपको जन्नत की सैर। अरे अरे घबराइए मत, इस दुनिया के पार वाली जन्नत का वक्त नहीं आया है अभी। मैं तो बात कर रही हूँ यहीं इसी धरती पर मौजूद जन्नत यानी स्वर्ग यानी हेवन की। जी हाँ, सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर और गर्मियों में खूबसूरत फूलों के रंग जिस जगह की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं, बस वहीं वहीं की सैर करेंगे आज। तो दोस्तों थाम लीजिए दिल और एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग, क्योंकि जगह का नाम तो इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

शाम की लाली, रात का काजल, सुबह की तकदीर हो तुम। चलता फिरता ताजमहल हो, सांस लेता कश्मीर हो तुम।

जी हाँ, अगर आपके भी जहन में था ये नाम कश्मीर, तो बजाइए खुद के लिए तालियां, क्योंकि बिल्कुल सही हैं आप। धरती के स्वर्ग, हेवन ऑन दिस अर्थ, जहां सब कुछ बिल्कुल वैसा सा है जैसा कि किसी ख्वाब में देखा हो कभी, वहीं मैं यानी नाज लेकर आ गई हूं आपको अभी। वैसे तो कश्मीर की शान में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है, लेकिन एक बड़ा ही मशहूर फारसी शेर है जो यहां आपकी नजर करना तो बनता है। तो अमीर खुसरो साहब से जोड़कर इस शेर को देखा जाता है, जिसमें कहा गया है कि गर फिरदौस बर्रुए जमीन नस्त, हमी नस्त ओ अमी नस्त ओ हमी नस्त। माने अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जमीन पर मौजूद ये जगह हर मायने में जन्नत कहलाने लायक है, तो जाहिर है कि इसकी तस्वीर भी बहुत बड़ी और खूबसूरत होगी, जिसे वक्त की पाबंदी के साथ पूरी तरह निहार पाना थोड़ा मुश्किल है। तो आप क्या करें, सिंपल है भाई, अपने प्लान को करते हैं।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूं और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक

मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कश्मीर का मुकुट या फिर खूबसूरत फूलों का मैदान और जिसे कहा जाता है गुलमर्ग, वहीं की सैर पर निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ। वर्ल्ड फेमस साइट है और सी लेवल से इसकी ऊंचाई 2730 मीटर के आसपास है। अपनी नेचुरल ब्यूटी, बर्फ से ढके पहाड़ों और रंग बिरंगे फूलों से सजे मैदानों के लिए ये जगह जानी जाती है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में ये जगह आती है और मेन अट्रैक्शंस कौन कौन से हैं यहाँ, इस पर तफसील से होगी बात। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि कैसे और किस तरह पहुंचेंगे आप कश्मीर और फिर खूबसूरत गुलमर्ग। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा श्रीनगर एयरपोर्ट अगर आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो, और गुलमर्ग के लिए यहाँ से आपको तय करनी होगी करीब 55 किलोमीटर की दूरी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही गुलमर्ग के लिए सीधी टैक्सी आपको मिल जाएगी और इस सफर में आपको लगेंगे करीब 2 से 2.5 घंटे। बाय ट्रेन अगर आपका गुलमर्ग जाने का विचार है तो टिकट आप खरीदेंगे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन का, जो देश के हर बड़े शहर से जुड़ा हुआ है, और फिर यहां से भी आप श्रीनगर या फिर गुलमर्ग के लिए सीधी टैक्सी बुक कर सकते हैं। कनेक्टिविटी कुछ ऐसी है कि श्रीनगर से गुलमर्ग जाते हुए करीब 14 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है टनमर्ग। विंटर्स में जब भारी बर्फबारी यहां पर होती है तो नॉर्मली गाड़ियों को यहीं पर रोक दिया जाता है और यहां से आगे यानी गुलमर्ग की ओर बढ़ने के लिए आपको बुक करनी होती है स्नो चेन वाली गाड़ियां। वो गाड़ियां जिनके टायरों पर चेन चढ़ी होती है और वो बर्फीले रास्तों पर फिसलती नहीं है। सुनिए ये खूबसूरत ट्रैक और फिर बातें करेंगे।

जबरदस्त स्नोफॉल देखने और करीब से महसूस करने का है अगर आपका सपना, तो जनाब गुलमर्ग आइए और दिसंबर से मार्च के बीच आइए, क्योंकि इस दौरान पूरे कश्मीर में बढ़िया बर्फबारी होती है और खासकर गुलमर्ग आपके एडवेंचर के हर शौक को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। शीतकालीन खेलों का केंद्र इस जगह को कहा जाता है, जहां स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, हॉर्स राइडिंग, हेली स्कीइंग या फिर टोबो गनिंग जैसी कई एक्टिविटीज का आप पार्ट बन सकते हैं। 2650 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स भी यहीं गुलमर्ग में मौजूद है जनाब। और इसके अलावा ट्रैकिंग और हिल क्लाइंबिंग के लिए भी ये जगह परफेक्ट है। गर्मियों में यानी मार्च से जून के बीच अगर आप आएंगे तो आपको नजर आएंगी हरी भरी वादियां, रंग बिरंगे फूल और सुहाना मौसम, जो मैदानी इलाकों के मुकाबले बहुत ज्यादा सुकून देने वाला होता है। कुल मिलाकर मोटा मोटी बात यह है कि आप चाहे जब भी गुलमर्ग आएं, यहाँ की खूबसूरती को कभी भूल नहीं पाएंगे।

गुल खिले हैं वादियों में, महक उठी है हर डगर, गुलमर्ग की इस खूबसूरती पर ठहर जाती है हर नजर। और जन्नत की जमीन पर बिखरे हों जैसे कुदरत के रंग हजार, गुलमर्ग की हवाओं में बहती है सिर्फ मोहब्बत और बहार। बिल्कुल सच बात है जी, और इस सच्चाई की गवाह मैं खुद भी हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं खुद अपनी फैमिली के साथ गुलमर्ग घूमकर आ चुकी हूँ, और इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली आपको बोल रही हूँ कि जरूर जरूर जरूर आपको करनी चाहिए कश्मीर और यहाँ के गुलमर्ग की सैर। अच्छा, गुलमर्ग ये नाम कैसे इस जगह का पड़ा, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है, तो सुनिए। गुलमर्ग या गुलमार्ग, कश्मीरी भाषा में इसका मतलब होता है गुलाबों या फिर फूलों का रास्ता, या फिर फूलों का मैदान भी आप इसे कह सकते हैं। पुराना नाम इस जगह का है गौरी मार्ग, जिसका मतलब है देवी गौरी का मार्ग। लेकिन फिर साल 1579 से 1586 तक यहां शासन करने वाले यूसुफ शाह चक ने इस जगह का नाम बदलकर गुलमर्ग कर दिया था। 17वीं शताब्दी में मुगल शासन के दौरान और फिर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश काल में ये जगह गर्मियों की सैरगाह के रूप में मशहूर हुई। और वो साल था 1927 जब यहाँ गुलमर्ग में स्की क्लब की स्थापना हुई। फिर इसके बाद ब्रिटिश शासन का जब अंत हुआ तो ये जगह कश्मीर और जम्मू रियासत का हिस्सा बन गई, और इसके बाद अक्टूबर 1947 में भारत में मिल गई। इस बीच कुछ समय के लिए इस जगह पर पाकिस्तान का कब्जा भी रहा, लेकिन बाद में भारतीय सेना ने इसे वापस ले लिया। तो ये थी इतिहास के पन्नों में गुलमर्ग की कहानी। मिलूंगी आपसे इस अगले गाने के बाद, तो जानेंगे यहाँ के फेमस टूरिस्ट पॉइंट्स मेरी जुबानी।

अपने सिग्नेचर डांस मूव्स के जरिए शर्मिला टैगोर जी को रिझाते शम्मी कपूर साहब इस गाने में आपको नजर आते हैं। और ये फिल्म थी साल 1964 में आई कश्मीर की कली। फिल्म की पूरी शूटिंग कश्मीर में ही हुई थी और खासकर इस मूवी के गाने जिस तरह से ब्लॉकबस्टर साबित हुए ना, उसमें कश्मीर की खूबसूरती का भी अपना किरदार और हिस्सा है। बढ़ेंगे आगे और एक बार फिर बात करेंगे खूबसूरत गुलमर्ग की, जहां की तस्वीर आप मेरे यानी नाज के साथ देख और सुन रहे हैं। तो जनाब, खूबसूरत लोकेशंस की यहां कमी है नहीं, बस आपके पास वक्त तसल्ली होनी चाहिए। गुलमर्ग गोंडोला यहां के मेन अट्रैक्शंस में से एक है, जो कि पूरी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची केबल कार है। शुरुआत इसकी हुई थी साल 1998 में और महीना था यही यानी कि मई, जिसके पहले फेज में इस गोंडोला ने सफर तय किया था 8,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कोंग दूरी तक का। फिर आया साल 2005 और फिर से महीना था यही यानी कि मई, जब दूसरे फेज में गुलमर्ग गोंडोला पहुंचा 13,500 फीट की ऊंचाई पर। और फिर तीसरे फेज में चेयर लिफ्ट को भी इसमें जोड़ा गया और वो साल था 2011। गुलमर्ग, खिलनमर्ग, हिमालयन रेंज, पीर पंजाल रेंज और नंदा देवी जैसी खूबसूरत और ऊंची जगहों के शानदार नजारे आपको इस गोंडोला के अंदर से दिखाई देते हैं, जिन्हें आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: द हेवन ऑन द अर्थ यानी धरती के स्वर्ग कश्मीर में है आप मेरे यानी नाज के साथ, जहां खूबसूरत गुलमर्ग की तस्वीर से हम हो रहे हैं रूबरू, जिसके बारे में मैं आपसे जितना भी कहूं कम ही होगा, क्योंकि चांदी सी चमकती बर्फ पर जब पड़ती है धूप की किरण, तो गुलमर्ग का हर एक नजारा जीत लेता है हर मुसाफिर का मन। सिर्फ 6 किलोमीटर दूर आप बढ़ेंगे गुलमर्ग से तो पहुंचेंगे खिलन मार्ग, जो एक बहुत ही खूबसूरत घास का मैदान है और जहां से हिमालय पर्वत रेंज का शानदार और कभी न भुला सकने वाला नजारा आपको दिखाई देगा। वसंत के मौसम में तो इस जगह की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि हर तरफ रंग बिरंगे फूल जो नजर आते हैं, और सर्दियों के मौसम में भी ये जगह कमाल लगती है। स्कीइंग के शौकीनों के लिए ये एक बढ़िया ढलान है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि गुलमर्ग कई धार्मिक स्थलों का भी है घर। यहाँ मौजूद महारानी मंदिर जरूर जाइएगा, जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है।

बाबा ऋषि की मशहूर दरगाह भी यहीं पर है, जो 15वीं शताब्दी के मशहूर सूफी संत बाबा पयामुद्दीन ऋषि को समर्पित है। सेंट मैरी चर्च भी है यहाँ, जिसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था और जो धूसर ईंटों, हरी छत और लकड़ी की नक्काशीदार दीवारों से बनी एक खूबसूरत इमारत है। विक्टोरियन आर्किटेक्चर का चमत्कार इस इमारत को माना जाता है और जो बर्फ से ढकी होने पर और भी, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है।

मुंबई का फैशन और कश्मीर का मौसम, दोनों का ना कोई मुकाबला है और ना ही इस बात की गारंटी कोई आपको दे सकता है कि ये हमेशा एक सा ही रहेगा। जबरदस्त स्नोफॉल से लेकर चमचमाती धूप तक और फिर झमाझम बारिश कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो बात शत प्रतिशत कही जा सकती है वो ये है कि कश्मीर और गुलमर्ग की खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं है। तभी तो बॉलीवुड की फिल्मों और गानों की शूटिंग के लिए ये जगह बेस्टम बेस्ट मानी जाती रही है। और इतनी सारी खूबियों के बाद अगर यहाँ के स्वाद की बात ना हो तो तस्वीर कुछ अधूरी सी रह जाएगी, नहीं? और ये हम होने नहीं देंगे और आपको बताएंगे गुलमर्ग में मिलने वाले लजीज पकवानों के बारे में भी बिल्कुल अभी। तो जनाब, ऑथेंटिक कश्मीरी स्वाद आप गुलमर्ग में चखेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है कश्मीरी कहवा या कावा का, जो बेसिकली केसर, दालचीनी, इलायची और कुतरे हुए बादाम से बनी ऑथेंटिक कश्मीरी ग्रीन टी है। और गुलमर्ग में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड में ये शरीर को तुरंत राहत और गर्माहट देने का काम करती है। इसके अलावा नून चाय, जिसे शीर चाय भी कहा जाता है, एक कमाल की गुलाबी रंग की नमकीन चाय है जिसे दूध, पिस्ता और बेकिंग सोडा मिलाकर बनाया जाता है। नॉनवेज के शौकीनों को मिलेगा रोगन जोश, गुश्ताबा, रिश्ता और कश्मीरी यखनी। और फिर कंप्लीटली

वेजिटेरियन लोगों की अगर बात करें तो आपके लिए मौजूद है वर्ल्ड फेमस कश्मीरी दम आलू, पनीर से बनी खास डिश, लद्दर चमन और कमल ककड़ी से बनी एक खास करी जिसका नाम है नादुरू यखनी। कश्मीरी बेकर्स आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगे जिन्हें कांडूर कहा जाता है यहाँ, और उनकी दुकानों पर आप चखेंगे लवासा और चोच वोरू जैसी कई सारी ब्रेड्स जो यहाँ की अनगिनत खासियतों में से एक है। और फिलहाल दोस्तों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तस्वीर में गुलमर्ग का ये सफर उम्मीद है आपने पसंद किया होगा मेरे यानी नाज के साथ। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, ये वादा है आपसे। फिलहाल खुदा हाफिज, गुड बाय और एक प्यार भरा नमस्ते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मतारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he's looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. In a social media post, Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue their conversation on boosting India-Italy friendship.

आपके जीवन से जुड़ा और आपके दिल के बेहद करीब कार्यक्रम घर आंगन। मैं हूँ श्रुति पुरी और अगले 50 मिनट तक हम करेंगे बातें जिंदगी की, घर की, परिवार की, रिश्तों की, सेहत की, समाज की और तमाम उन मुद्दों की जो कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन का हिस्सा हैं। तो जहाँ भी हैं आप, घर पर, ऑफिस में, सफर में या फिर अपने दिन की किसी भाग दौड़ के बीच, तो थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालते हुए बस जुड़े रहिए हमारे साथ। आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी हमारा आपका साथ बना रहेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के श्रोता हमसे जुड़ सकते हैं AIR न्यूज़ लाइव 24/7 यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारा साथ रहेगा दोपहर 1 बजे तक। आपके सुझाव, सवाल और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है, इसलिए हमें लिख भेजिए fmgoldg@gmail.com पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र, नई सोच, नई जानकारी और सकारात्मक बातचीत से, क्योंकि बातें वही जो जुड़ी हों आपकी ज़िंदगी से। लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे हैं फिल्म तकदीर में।

श्रोताओं, अब समय है सुविचार का और आज का सुविचार है सुंदर हे विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। कवि सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्तियाँ हमेशा मन को छू जाती हैं। इसका सरल अर्थ है, पक्षी सुंदर है, फूल भी सुंदर हैं, लेकिन मनुष्य इन सबसे अधिक सुंदर और श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे विचार, संवेदना, सृजन और मानवता का अनमोल वरदान मिला है। और आप सोच रहे होंगे कि हमने आज इस खूबसूरत विचार से शुरुआत क्यों की है, तो बता दें कि आज हिंदी साहित्य के प्रकृति और सौंदर्य के अप्रतिम कवि सुमित्रा नंदन पंत की जयंती है। पंत जी ने अपनी रचनाओं में प्रकृति के सौंदर्य को जितनी खूबसूरती से उकेरा, उतना ही उन्होंने मानव जीवन के मूल्यों और संवेदनाओं को भी महत्व दिया। उनकी पंक्तियां हमें बहुत सहज तरीके से ये समझाती हैं कि मानव जीवन अपने आप में एक सौभाग्य है और इसकी सार्थकता भी तभी है जब हम अपने भीतर संवेदनशीलता, करुणा और सकारात्मकता को जीवित रखें। और श्रोताओं, आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल जी की पुण्यतिथि भी है, हम उनको सादर नमन करते हैं। आपका जन्म अविभाजित भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के सिलहट जिले में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आप प्रसिद्ध राष्ट्रवादी तिकड़ी लाल बाल पाल के अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ थे। क्रांतिकारी बिपिन्द्र चंद्र पाल ने वर्ष 1905 के बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी और 1907 के वंदे मातरम राजद्रोह मामले में महर्षि अरविंद घोष के खिलाफ गवाही देने से साफ इनकार करने पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 6 महीने के कड़े कारावास की सजा सुनाई थी। बिपिन चंद्र पाल एक प्रखर विचारक, प्रख्यात वक्ता और ओजस्वी पत्रकार थे। उन्होंने न्यू इंडिया, वंदे भारत, परिदर्शक और स्वराज जैसे प्रभावशाली समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का संपादन और प्रकाशन किया। सामाजिक सुधारों के पक्ष में आवाज उठाई, रूढ़िवादी जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और स्वयं एक ब्राह्मण विधवा से विवाह करके समाज के सामने प्रगतिशील मिसाल प्रस्तुत की। द सोल ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रवाद और नेशनलिटी एंड एम्पायर जैसी कालजयी पुस्तकों की रचना भी आपने ही की। बिपिन चंद्र पाल की बहुचर्चित आत्मकथा मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स भारत के तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य और स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को समझने का एक अत्यंत प्रमाणिक दस्तावेज है और हम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल को उनकी पुण्यतिथि पर आज के दिन शत शत नमन करते हैं। गुड्डी फिल्म में अभी आप वाणी जयराम को सुन रहे हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, प्रकृति ने हमें अनगिनत अनमोल उपहार दिए हैं, नदियां, पर्वत, पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल, लेकिन इन सब के बीच एक नन्हा सा जीव ऐसा भी है जो आकार में भले ही छोटा हो लेकिन प्रकृति के संतुलन और हमारे जीवन में उसकी भूमिका बेहद बड़ी है, और वो है मधुमक्खी। फूलों से रस लेकर शहद बनाने वाली मधुमक्खियां केवल मिठासी नहीं घोलती बल्कि फसलों के परागण के महत्वपूर्ण योगदान देकर हमारी खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को भी बनाए रखती हैं। इन्हीं नन्ही मेहनतकश जीवों के महत्व को रेखांकित करके और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और रासायनिक कीटनाशकों का अधिक उपयोग मधुमक्खियों के अस्तित्व के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में प्रकृति को संतुलित और सुरक्षित रखना है तो इन नन्हे परागणकर्ताओं की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने में अपना छोटा सा योगदान अवश्य देंगे और प्रकृति की इस मधुर गूंज को सुरक्षित रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है ना? मोहम्मद रफी और आशा भोसले को अभी आप सुन रहे हैं फिल्म आराधना।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ऊर्जा पर निर्भर है। रसोई में चूल्हा जलाने के लिए एलपीजी, यातायात के लिए डीजल पेट्रोल, घरों और उद्योगों के लिए बिजली और शहरी जीवन में तेजी से बढ़ता पीएनजी का उपयोग। ऊर्जा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। सुविधा के इस निरंतर उपयोग के बीच हम ये भूल जाते हैं कि ऊर्जा संसाधन असीमित नहीं है, वो सीमित हैं। आज वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या, तेज रफ्तार जीवन शैली और औद्योगिक विकास ने ऊर्जा खपत को कई गुना बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम पदार्थों पर अत्यधिक निर्भरता न केवल आर्थिक चुनौती है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, थोड़ी सी दूरी के लिए जाने पर वाहन की जगह पैदल चलना या साइकिल का उपयोग करना, कार पूलिंग अपनाना और रसोई में गैस का अनावश्यक उपयोग न करना और जरूरत के अनुसार ही ईंधन का उपभोग करना, आज के समय में केवल ऊर्जा संरक्षण ही नहीं बल्कि ऊर्जा संचयन का भी अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। ये सौर ऊर्जा का संग्रह हो, बैटरी स्टोरेज हो या घरेलू स्तर पर ईंधन की अनावश्यक बर्बादी रोकना, हर प्रयास आने वाले कल को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक कदम है। ऊर्जा केवल सुविधाओं का माध्यम नहीं है बल्कि विकास और भविष्य की आधारशिला भी है। आज यदि हम ऊर्जा को बचाना और संचित करना सीख लें तो आने वाली पीढ़ियों को एक अधिक सुरक्षित और संतुलित दुनिया हम दे सकते हैं। दादा फिल्म में अभी आप हेमलता, मोहम्मद रफी, शैलेंद्र सिंह और दिलराज कौर को सुन रहे हैं।

0: श्रोताओं, कुछ भी सुनने से पहले आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, हम आकाशवाणी के 90 वर्ष का जश्न मना रहे हैं और आकाशवाणी में बच्चों के कार्यक्रम का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। 1930 के दशक में अपनी शुरुआत से ही इसने बच्चों के मनोरंजक और शिक्षा और सर्वांगीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब 1936 में भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, तभी से बच्चों के लिए कहानियां और नाटकों का प्रसारण शुरू हो गया था। उस समय का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा देना था। 1940-50 के दशक में बच्चों के कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुए। विभिन्न केंद्रों जैसे दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता से बाल सभा और खिलौना घर जैसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। इन्हें आकर्षक बनाने के लिए रेडियो प्रस्तोता को अंकल, दीदी या दादा जैसे आत्मीय संबोधन दिए जाते थे। बच्चों को पत्र लिखने और अपने कार्यक्रम में शामिल करने की अनूठी परंपरा भी शुरू हुई। 1960 से 1980 का दशक वो दौर था जब बच्चों ने रेडियो नाटकों, कविताओं के पाठ और संगीत कार्यक्रमों में खुद ब खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्तर पर बाल दिवस 14 नवंबर के मौके पर विशेष कार्यक्रमों का निर्माण होता था जिसे पूरा देश सुनता था। विविध भारतीय और क्षेत्रीय प्रसारण पर भी बच्चों के लिए नन्हे मुन्ने, बाल गोपाल और बाल जगत जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम आए। वहीं क्षेत्रीय केंद्रों जैसे दिल्ली, शिमला और जयपुर से स्थानीय बोलियों में भी बच्चों के लोकगीत और कहानियां प्रसारित की गईं, जिससे ये गांव-गांव तक भी पहुंच पाया। आधुनिक युग और डिजिटल मंच यानी 2000 के बाद टेलीविजन और इंटरनेट के युग में भी आकाशवाणी ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी। अब बाल कार्यक्रम एफएम चैनलों और क्षेत्रीय केंद्रों दोनों के माध्यम से प्रसारित होते हैं। इन कार्यक्रमों में अब पर्यावरण संरक्षण, सामान्य ज्ञान और नई शिक्षा नीति से जुड़े विषय शामिल होते हैं। तो आज भी जो ये बच्चों के कार्यक्रम हैं, ये बच्चों की कल्पना और रचनात्मकता को पंख देने का काम कर रहे हैं।

0: मिस्टर नटवरलाल। इस फिल्म में अभी आप अमिताभ बच्चन और मास्टर रवि को सुन रहे हैं।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

0: नहीं नहीं जा रहा था।
1: आगे भी तो बोलेगा।
0: बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई।

श्रोताओं, कहा जाता है कि अगर भारत एक रंगमंच है तो दिल्ली उसका सबसे जीवंत मंच है, जहां इतिहास भी सांस लेता है और आधुनिकता भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाती है। राजधानी दिल्ली केवल एक शहर नहीं बल्कि अनेक संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं, स्वादों और अनुभवों का अद्भुत संगम है। यही कारण है कि दिल्ली को अक्सर दिलवालों की दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली का इतिहास अत्यंत समृद्ध और प्राचीन है। इसे इंद्रप्रस्थ के रूप में भी जाना जाता था और दिल्ली ने कई राजवंशों जैसे तोमर, चौहान, दिल्ली सल्तनत, मुगल और ब्रिटिश शासन को आते जाते देखा है। शायद यही कारण है कि दिल्ली को

अक्सर सात शहरों का नगर भी कहा जाता है। लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला आज भी इस गौरवशाली विरासत के साक्षी हैं। इनमें से कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और लाल किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं। दिल्ली भारत का राजनीतिक केंद्र होने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में भी अग्रणी है। यहाँ देश की संसद, सर्वोच्च न्यायालय और प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं। दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है और विश्व के बड़े मेट्रो नेटवर्क्स में भी शामिल है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान दिल्ली को विशेष पहचान देते हैं। उच्च शिक्षा में दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हैं। दिल्ली के खान पान, आहा, वो तो उसकी आत्मा है। यहाँ का स्ट्रीट फूड दुनिया भर में मशहूर है। चाट, गोलगप्पा, पराठे, छोले भटूरे, दही बल्ला, कबाब और बटर चिकन के नाम आते ही दिल्ली की याद आ जाती है। चांदनी चौक, पराठे वाली गली का स्वाद और पुरानी दिल्ली के व्यंजनों की खुशबू दिल्ली को और भी खास बनाती है। दर्शनीय स्थलों की बात करें तो दिल्ली में इतिहास और आधुनिकता साथ साथ चलते हैं। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, जंतर मंतर, कैनॉट प्लेस और दिल्ली हाट यहाँ आने वालों को अलग अलग अनुभव प्रदान करते हैं। दिल्ली का जीवन अपने आप में बेहद मनमोहक और बहुरंगी है। सुबह की चाय से लेकर देर रात तक चलने वाली चहल पहल और लोगों का जीवंत स्वभाव सब मिलकर दिल्ली को खास बनाते हैं। यहाँ हर राज्य की संस्कृति को स्पर्श मिलता है, इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया कहना गलत नहीं होगा। शायद इसीलिए दिल्ली को केवल देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है और शायद यही है दिल्ली का दिल्ली नामा, एक ऐसा शहर जो हर बार कुछ नया सुनाता है, दिखाता है और हर एक के दिल में जगह बना लेता है। तीन बहुरानियां इस फिल्म में अभी आप आशा भोसले को सुन रहे हैं।

एक वक्त था जब पड़ोसी परिवार का हिस्सा माना जाता था, घर की चाबी भी उनके पास रहती थी और खुशियों से लेकर मुश्किलों तक हर बात में उनकी मौजूदगी होती ही थी। लेकिन आज ऊंची दीवारें और व्यस्त जीवन शैली ने इस रिश्ते को थोड़ा सा सीमित कर दिया है। फिर भी सच्चाई यही है कि सबसे पहले मदद के लिए जो दरवाज़ा खुलता है वो पड़ोसी का होता है। ज़रा सोचिए, घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, बच्चों को थोड़ी देर के लिए किसी के पास छोड़ना हो या घर की छोटी मोटी ज़रूरत हो, ऐसे में सबसे पहले कौन याद आता है? वो होता है आपका पड़ोसी। सुबह की एक मुस्कान, सुरक्षा का एक एहसास, घर के आसपास का ध्यान रखना, एक दूसरे की अनुपस्थिति में घर पर नज़र रखना, ये सब बातें बिना कहे ही एक मजबूत भरोसा बना देती हैं। वही हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके सुख दुख के साथ ज़रूर खड़े हों, ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करें और उन्हें एक स्पेस दें, प्राइवेसी का सम्मान करें उनकी। छोटे छोटे व्यवहार जैसे त्योहारों पर मिठाई बांटना, हालचाल पूछना या बच्चों के साथ खेलने देना, बच्चों को साथ में खेलने देना, ये सब और रिश्तों को गहरा ही बनाते हैं। दरअसल एक अच्छा पड़ोस एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है जो ज़िंदगी को सुरक्षित बनाता है और खूबसूरत भी, क्योंकि जब पड़ोसी दोस्त बन जाते हैं तो ज़िंदगी थोड़ी आसान और बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाती है। धर्मवीर फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर और आशा भोसले को सुन रहे हैं।

श्रोताओं, हल्की हल्की मुस्कान, कुछ मीठी सी बातें और दिल में ठहरती हुई ये गर्माहट, बस यही तो है हमारे घर आंगन की पहचान। तो आज की ये महफिल यहीं सिमटती है, लेकिन इसके एहसास आपके साथ चलते रहें, यही तो हमारी ख्वाहिश है। मैं आपकी अपनी होस्ट श्रुति पुरी आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा न्योता, आपके अपने दिल की बातें, अपने किस्से, अपने सुझाव हमें ज़रूर लिख भेजिए हमारे fmgoldgie@gmail.com पर, क्योंकि आपका साथ ही तो इस घर आंगन को सच में घर बनाता है। तो अब चलते हैं, फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों, नए एहसासों और उसी अपनेपन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और सुनिए ये गीत प्यारा सा कारवां फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत

0: भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पेइजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. Earlier today, PM Modi said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the two countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels.

1:10:55 हो चुके हैं एफएम गोल पर। ये वक्त है कलाकार बेमिसाल का और आपके साथ मैं हूं रजनी, कलाकार बेमिसाल में। आज बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने गिनी चुनी फिल्मों में काम किया, लेकिन अपनी खूबसूरती, चुलबुले अंदाज और अभिनय से उन्होंने बरसों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। ये अभिनेत्री हैं बबीता। तो शुरुआत करते हैं उनकी सुपरहिट फिल्म फर्ज के लोकप्रिय गीत के साथ। आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की।

बबीता के पिता हरी शिव देसानी एक एस्टैब्लिश कैरेक्टर आर्टिस्ट थे और बबीता की माँ बारबरा ब्रिटिश मूल की थी। इस जोड़े के यहाँ 20 अप्रैल 1947 को कराची में बबीता का जन्म हुआ। इसी साल उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। और आपको बता दूं कि अपने जमाने की प्रसिद्ध अभिनेत्री साधना बबीता की चचेरी बहन थी। और अगला गीत जो हमने आपके लिए चुना है ये है फिल्म अनजाना से।

बबीता के पिता एक्टर थे और उनकी चचेरी बहन साधना भी जानी मानी अभिनेत्री थी, इसलिए बबीता के मन में भी बचपन से ही अभिनेत्री बनने की इच्छा पलने लगी और उनका ये सपना पूरा हुआ फिल्म 10 लाख के साथ। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब उनकी उम्र 19 बरस की थी और पहली ही फिल्म में उन्होंने सफलता का स्वाद भी चख लिया। तो उनकी पहली फिल्म यानी 10 लाख से आपको सुनवाते हैं ये गीत, आवाज है मोहम्मद रफी की।

0: लग जागले दिलजुबा।
1: हालांकि 10 लाख फिल्म पहले रिलीज हुई थी, लेकिन बबीता ने जो पहली फिल्म साइन की थी वो थी राज। इसमें उनके नायक थे राजेश खन्ना, जिनकी ये दूसरी फिल्म थी। 10 लाख फिल्म से बबीता को पहचान मिली, लेकिन 1967 में आई फिल्म राज ने उन्हें स्टार बना दिया।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस छोटे से ब्रेक के बाद जारी है कलाकार बेमिसाल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर और आज की शख्सियत हैं फिल्म अभिनेत्री बबीता। 1966 का जो साल था 67 का जो साल था वो बबीता के लिए यादगार रहा क्योंकि एक तो उनकी पहली फिल्म 10 लाख सफल रही, उसके बाद राज सुपरहिट हो गई और इसी साल उनकी फिल्म फर्ज भी रिलीज हुई जिसमें उनके नायक जितेंद्र थे और ये फिल्म भी बहुत बहुत बहुत पसंद की गई। 1968 में विश्वजीत के ऑपोजिट उनकी एक और सफल फिल्म आई किस्मत और इसी साल आई हसीना मान जाए को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया। तो हसीना मान जाए की फिल्म से आपको सुनवाते हैं ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: हसीना मान जाएगी के अलावा शशि कपूर के साथ उनकी एक और सफल फिल्म आई थी एक श्रीमान एक श्रीमती। राजेश खन्ना के साथ डोली, राजेंद्र कुमार के साथ अनजाना और मनोज कुमार के साथ पहचान ने बॉक्स ऑफिस पे उनकी बड़ी पहचान बनाई। बबीता की लाइफ में बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने आरके बैनर की फिल्म कल आज और कल शुरू की। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात रणधीर कपूर से हुई जो कि जल्दी ही प्यार में बदल गई। इस फिल्म के रिलीज के बाद 1971 में एक भव्य आयोजन में ये दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। इस गठबंधन से उन्हें दो प्यारी प्यारी बेटियां मिली, करिश्मा कपूर और करीना कपूर, जिन्होंने फिल्म अभिनेत्री के तौर पे बड़ा नाम कमाया। फिलहाल अगला गीत इसी फिल्म से यानी कल आज और कल से आपको सुनवाते हैं। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले की।
1: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
2: क्या क्या क्या

उनकी शादी के बाद रणधीर कपूर और बबीता ने जीत फिल्म में एक साथ काम किया। शादी के बाद बबीता की बिखरे मोती, बन फूल और एक हसीना दो दीवाने जैसी फिल्में रिलीज हुई। 1973 में उनकी फिल्म सोने के हाथ रिलीज हुई, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 मई महीने की 20 तारीख व दिन है बुधवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्री तंजन दौरजी, मोनपा मत घोषक श्री संगे टाशी, तकनीकी अभियंता श्री तानिंग तको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अंटू कुमार दास और शिखा डिका, और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उत्कोषिका टाशी चुटुन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: In Congo, the death toll due to Ebola outbreak has risen to 136. Health Minister Roger Kamba informed this amid the spread of deadly virus that has gripped the eastern part of the country. According to Congolese health authorities, the country has recorded 543 suspected cases and 32 confirmed infections, while neighboring Uganda has reported 2 confirmed cases. On to sports. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outline roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging Centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल UL-PGM-MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त

0: लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया है।

0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा

0: महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे विभिन्न कलाकारों की आवाज में चंद शिव भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विभिन्न कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसके साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: श्रोताओं, प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पापोन और साथियों की आवाज में चंद बिहू गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पपोन और साथियों की आवाज में चंद असमिया बिहू गीत। इसी के साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवंग की 11वीं ह्यूमैनिटी कक्षा की छात्रा पेमा छक्की से मेरा शोक और इसने मुझे क्या सिखाया है विषय पर चंद शब्द।
1: आकाशवाणी तवंग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं पेमा छक्की पीएम श्री जेनवी तवंग में कक्षा 11वीं मानविकी में पढ़ती हूँ। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय मेरा शौक और इसने मुझे क्या सिखाया है। जो किताब दिल को छू जाए वो दोस्त बन जाती है। पढ़ने वाले की शख्सियत में चार चांद लगाती है। ना कोई शिकायत ना कोई मांग, किताबें ही तो है जो उम्र भर साथ निभाती है। हर व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई शौक अवश्य होता है। शौक हमारे जीवन को आनंद, ऊर्जा और सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। शौक न केवल हमें मानसिक सुख देते हैं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरा शौक पुस्तक पढ़ना है। मुझे खाली समय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही मुझे कहानियां पढ़ने का शौक रहा है। धीरे धीरे यह शौक आदत में बदल गया। मैं कहानी की किताबों के साथ साथ उपन्यास, जीवनी, प्रेरणादायक पुस्तकें और सामान्य ज्ञान से जुड़ी किताबें भी पढ़ती हूँ। पुस्तकें मुझे एक नई दुनिया से परिचित कराते हैं और मेरे ज्ञान को भी बढ़ाते हैं।

0: पुस्तक पढ़ने से मेरी भाषा में बहुत सुधार हुआ है। मेरे शब्दकोश में नए शब्द जुड़े हैं और मेरे लेखन क्षमता भी बेहतर हुई है। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है और मैं अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाती हूँ। किताबें पढ़कर मेरी कल्पना शक्ति भी विकसित हुई है। मेरे एक शौक ने मुझे कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाया है। इसने मुझे अनुशासन सिखाया है, क्योंकि नियमित रूप से पढ़ने के लिए समय प्रबंधन आवश्यक होता है। इसने मुझे धैर्य रखना सिखाया है, क्योंकि हर पुस्तक को समझने के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। पुस्तकें पढ़ने से मुझे अच्छे और बुरे में अंतर समझ में आया है। महापुरुषों की जीवनी पढ़कर मुझे ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष का महत्व समझ में आया। कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखने की प्रेरणा मुझे किताबों से ही मिली है। मेरा शौक मुझे बुरी आदतों से दूर रखता है और खाली समय का सही उपयोग करना सिखाता है। जब मैं उदास या तनाव में होती हूँ, तब पुस्तकें मेरा मन शांत कर देती है। वे मेरी सच्ची मित्र है, जो हर समय मेरा साथ देती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि शौक जीवन को सुंदर और आशापूर्ण बनाते हैं। हर एक किताब एक नई दुनिया दिखाती है। खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। धन्यवाद।
1: अभी आपने सुना पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवंग की 11वीं ह्यूमैनिटी कक्षा की छात्रा पेमा चुक्की से मेरा शौक और इसने मुझे क्या सिखाया है विषय पर चंद शब्द। इसी के साथ आज का कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किडबैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे सुनिधि चौहान और शाहिद मालिया की आवाज में फिल्म जब हैरी मेट सेजल से। शब्द रचना है इरशाद कामिल के व संगीत है प्रीतम का।

0: अभी आपने सुना फिल्म केदारनाथ से गीत देव नेगी की आवाज में गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य व संगीत था अमित त्रिवेदी का। आप सुने कार्यक्रम नारी संगीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा शतपथ फिल्म ये जवानी है दीवानी से। रेखा भारद्वाज और विशाल ददलानी की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

0: फिल्म ये जवानी है दीवानी के संगीत के साथ कार्यक्रम नारी संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: श्रोताओं प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे आतिफ असलम की आवाज में फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। आशीष पांडे के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

अभी आपने सुना फिल्म नोटबुक से गीत, कमाल खान की आवाज में गीतकार थे कौशल किशोर और संगीत था विशाल मिश्रा का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे आतिफ असलम और तुलसी कुमार की आवाज में फिल्म सत्यमेव जयते से। कुमार के लिए इस गीत को संगीत से संवारा है रोचक कोहली ने।

श्रोताओं आप सुन रहे श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से ख्याल। इसके साथ आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र अब से थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार व 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: समाचार।
1: यह आकाशवाणी है, अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGMV-3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं प्रसिद्ध अभिनेता सुरेश गोपी ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII के ईटानगर परिसर का दौरा किया। पूर्वोत्तर में ऑयल पाम के तीव्र विकास के लिए रणनीतिक समाधान विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में आयोजित की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में 9वीं राज्य स्तरीय हंगपंग दादा मेमोरियल ट्रॉफी 2026 के लीग चरण के मुकाबले आज भी जारी रहे, जिसमें लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों के फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कड़ा मुकाबला और उत्साहपूर्ण प्रदर्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना केंद्र के फैसले की चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। और IPL क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेट्रोला के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस बातचीत का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करना है। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। ये बातचीत भारत और इटली के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है, जिसमें आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच संबंधों को विस्तार देने पर विशेष बल दिया गया है। श्री मोदी ने भारत और यूरोप के बीच संबंधों और मजबूत बनाने में इटली के सहयोग की भी सराहना की है। उन्होंने उभरती टेक्नोलॉजी, विनिर्माण तथा सतत विकास के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के साथ साथ अपनी कूटनीति और आर्थिक संबंधों को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। देश ने आत्मनिर्भर भारत के पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रसिशन गाइडेड मिसाइल V3 के अंतिम विकास परीक्षण का सफलतापूर्वक पूर्ण किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के

0: साथ समाचार कक्ष।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सहउत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड के इसी प्रभावशालिता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं प्रसिद्ध अभिनेता सुरेश गोपी ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के ईटानगर परिसर का दौरा किया, जिसका उद्देश्य संस्थान की मौजूदा आधारभूत संरचना की कमियों को लंबित कार्यों का आकलन करना रहा, जिनके बाद में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों तथा मेसर्स केनगे कंस्ट्रक्शन के साथ चल रही परियोजनाओं की स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संस्थान की सभी इमारतों और सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया तथा आधारभूत संरचना के समय पर पूर्ण होने में आ रही प्रगति और चुनौतियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ शिक्षा राज्य मंत्री PD सोना, उपायुक्त लोबसांग शेरिंग, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक गजुमताली तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT परनायक रिटायर्ड ने राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि MSME अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। नई दिल्ली में भारत में MSME सशक्तिकरण हेतु राज्य और केंद्र सरकारों के साथ रणनीतिक साझेदारी का नेतृत्व करने वाले ईशान इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनु श्रीवास्तव के साथ बातचीत में राज्यपाल ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, जनजातीय हस्तशिल्प, जैविक खेती की संभावनाओं, वन उत्पादों, पर्यटन अवसरों और वैश्विक सांस्कृतिक विरासत के कारण उद्यमिता और स्थानीय उद्योग विकास के लिए अपार संभावना रखता है। उन्होंने कहा कि MSME युवाओं, महिलाओं, कारीगरों, किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सतत आजीविका के अवसर पैदा कर सकते हैं। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि बेहतर आधारभूत संरचना, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, बाजार संपर्क और डिजिटल पहुंच के माध्यम से MSME समावेशी विकास को गति देने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं तथा आत्मनिर्भर अरुणाचल और विकसित भारत के लक्ष्य में भी योगदान दे सकते हैं। पूर्वोत्तर में ऑयल पाम के तीव्र विकास के लिए रणनीतिक समाधान विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्देश्य पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में ऑयल पाम की खेती के तीव्र विस्तार के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण तैयार करना तथा केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत वनस्पति तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना है। इस कार्यशाला का संयुक्त रूप से आयोजन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ ऑयल पाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ICAR, IIOPR, केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों द्वारा की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के खेली जा रही 9वीं राज्य स्तरीय हांगपंग दादा मेमोरियल ट्रॉफी 2026 की लीग चरण के मुकाबले में आज जारी खेलों में लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों के फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं में कड़ा मुकाबला और उत्साहपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला। भाग लेने वाले जिलों में विभिन्न स्थलों से आयोजित प्रतिभागियों में उत्कृष्ट टीम भावना, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है। आज फुटबॉल बॉयज वर्ग में मुकाबले में ITPP ग्राउंड 1 और दारका ग्राउंड में खेले जा रहे हैं, जबकि फुटबॉल गर्ल्स वर्ग में मैच ग्राउंड 3 पाकाम और ग्राउंड 4 APPBN में जारी रहेंगे। वहीं लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों की वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं क्रमशः आर्मी ग्राउंड के कोर्ट नंबर 1 और कोर्ट नंबर 2 में आयोजित की जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत आधारित क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा है कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य

0: न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय को बढ़ावा भी मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संविदा सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक पर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। DRDO के मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGMV3 का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं प्रसिद्ध अभिनेता सुरेश गोपी ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII के ईटानगर परिसर का दौरा किया। पूर्वोत्तर में ऑयल पाम के तीव्र विकास के लिए रणनीतिक समाधान विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में आयोजित की जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashwani, the news read by Morgan Bagra. President Draupadi Murmu today said that to achieve the goal of a Viksit Bharat and take society to the pinnacle of progress, officers will often have to move forward by striving against the tide. She said this after a group of IAS officers from the 2024 batch called on her at Rashtrapati Bhavan today. The president said the young officers will have the unique opportunity to work in diverse fields and head teams of experts in specialized areas. Ms. Murmu said, refraining from making a decision does not constitute morality. She emphasized that taking the right decisions in alignment with public interest and established order represents the true essence of morality. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the two countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels. They said the partnership is acquiring a new dimension by combining the economic dynamism, societal creativity, and centuries-old civilizational wisdom of both nations. The two leaders said their cooperation reflects a shared understanding that prosperity and security in the 21st century will depend on the ability of nations to innovate, manage energy transitions, and strengthen strategic sovereignty. Defense Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart NU back in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defense industry and strategic cooperation with a shared commitment towards regional peace, stability and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said it was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defense cyber cooperation. The MOU was exchanged between the National Defence College of India, the Korea National Defence University and UN Peacekeeping Corporation. The minister said that he is looking forward to strengthening the special strategic partnership between the two nations. India has taken another important step towards strengthening its indigenous defense capabilities under the Atmanirbhar Bharat initiative. The Defense Research and Development Organization, DRDO, has successfully completed the final development trials of the unmanned aerial vehicle launch precision guided missile V3, marking a significant achievement for the country's defense sector. Defense Minister Rajnath Singh has complimented DRDO and

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरुका। कार्यक्रम जरुका में पहले सुने एक जरूरी सूचना। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी DDAC तवांग के कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार ईटानगर के शिक्षा आयुक्त दिनांक 13 मई 2026 के अनुमोदन के अनुसार निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को नीचे दिए गए विषय के लिए अतिथि संकाय यानी गेस्ट फैकल्टीज के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। गेस्ट फैकल्टीज को प्रारंभ में 1 जून 2026 से 10 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और यदि पद मौजूद हो तो प्रदर्शन के आधार पर प्रधानाचार्य की सिफारिश पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। PGT शिक्षकों की आवश्यकता है। बायोलॉजी में 1, फिजिक्स में 1, इंग्लिश में 1, ज्योग्राफी में 2 और TGT शिक्षकों के लिए आवश्यकता है इंग्लिश में 1, हिंदी में 2, मैथ्स में 3 और साइंस में 4। गेस्ट फैकल्टी को प्रति माह 30,000 रुपये मानदेय दिए जाएंगे। गेस्ट फैकल्टी PGT के लिए शैक्षणिक योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएट के साथ BEd, अगर ना हो तो पोस्ट ग्रेजुएट। गेस्ट फैकल्टी TGT के लिए शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएट के साथ BEd, अगर ना हो तो ग्रेजुएट। यदि कोई नियमित सरकारी नियुक्ति होती है तो गेस्ट फैकल्टी की सेवा स्वयं समाप्त हो जाएगी अगर संबंधित पद का शिक्षक अपने पद स्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करता है। आवेदन पत्र 20 मई 2025 से डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन तवांग के कार्यालय से कार्य समय में प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 29 मई 2026 तक। निर्धारित तिथि या समय के बाद प्राप्त और किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन को तत्काल अस्वीकार दिया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप DDAC तवांग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुआ। जरुका में अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर कार्यक्रम शेदुन लेरिम के अंतर्गत कार्यक्रम नंगचे कलब का शेष भाग, जिसमें आप सुन सकेंगे मुन ड्रती एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा तवांग के बुद्धा पार्क में आयोजित आज से 12 दिवसीय धर्म कार्यक्रम के उद्घाटन दिवस के अवसर पर बोमदिला के गोंदसे गादेन रापकेलिंग मठ के पूर्व मठाधीश गेशी दुंडुप सिरिंग से अवलोकितेश्वर मंत्र ओम मणि पद्मे हुम की परिभाषा और इसके गुणों पर बोलते हुए। इसके बाद आप सुन सकेंगे थेकचिन छोइलिंग सुकलकांग धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के लामाओं द्वारा बौद्ध भक्ति गीत। शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर आप श्रोताओं द्वारा

फोन पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसे संचालित करेंगे सिटी म्यांगचिन। शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत कार्यक्रम क्वामी तराने के अंतर्गत फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो से। आज रात्रि 8 बजे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत, 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। तो ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुनिए हमारे केंद्र से कल यानी 21 मई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे अंग्रेजी समाचार के साथ, 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, 2:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, 3:30 पर कार्यक्रम महिला मंच, 3:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राख रंग, 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नमथर कल शाम 5 बजे, 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में श्री थुप्तन टाशी से, 5:35 पर लामा मेतो टाशी और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत, जिसका शेष भाग आप सुन सकेंगे कल शाम 6:20 पर। शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे। शाम 7:12 पर कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत उदित नारायण और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म गदर एक प्रेम कथा से उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार एस की आवाज में गीत, फिल्म तेरे नाम से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गीत, फिल्म धड़कन से उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में गीत, फिल्म कभी खुशी कभी गम से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गीत, फिल्म कहो न प्यार है से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गीत, फिल्म मुझसे शादी करोगे से उदित नारायण, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में गीत, और फिल्म लगान से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गीत। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत फिल्म मैरी कॉम से विशाल ददलानी और सलीम मर्चेंट की आवाज में। कल रात्रि 8 बजे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत, 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि के ठीक 9 बजे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम जरोखा यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मोनपा में।

Yeah.

자자 노션 다베순 강제 공부 딘제 야소이 우즈 메제 예자 다베제 신대 능게 도바 신게

0: Marta Arora. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के रक्षा खरीद कार्यक्रम प्रशासन मंत्री ली जोंग चुल से सोल में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, उत्पादन और निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार तंत्र को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा और उत्पादन भागीदारों तथा उद्योग जगत की सराहना की है। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल के साथ चर्चा की। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रस्तुति में एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदों के बारे में बताया गया। इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया और समिति के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं रखीं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू चल सकती है। असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba.

निजी मेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा फोन पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, और इस कार्यक्रम को आज संचालित कर रही हैं सिटी म्यांगचिन।

0: दोस्तों, हमें हमेशा अपने परिवार के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि पत्ते सिर्फ पेड़ पर सुरक्षित रहते हैं, टूटे हुए पत्तों को अक्सर जला दिया जाता है। आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी सुनने वाले आवाज की दुनिया के तमाम दोस्तों को चिट्ठी महाजन का नमस्कार। दोस्तों, हमारे आज के हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ तकनीकी सहयोगी है तानिंग ताको और शिखा देका। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सुनते हैं हमें ये पहला फोन किस श्रोता ने और कहाँ से किया है। हेलो, नमस्कार। तेज तिले ला पिमटिसला अगर गाँव पोछा माती नी ला जिग पिमटिसला अंगतंग लहुपनाय गाँव खम दुछु नप नला लस लस ता नाय नांग थी दरन मोरे ला लस लस ता नाय नांग में नांग अतां श्यासी उम्तिन माप क्या सुकताम लरो तो जिग श्यासी ती छमा रसा
1: वाला
0: नाय नांग दा
1: दामन
0: ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

0: हेलो नमस्कार
1: जी। नमस्कार
0: जी, नमस्ते
1: जी। मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, मैं ग्राम अकबरपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश MP से।
0: जी मोहम्मद हारून जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और मोहम्मद जी, आपने बड़े दिनों के बाद हमें कॉल किया।
1: जी जी, काफी समय में फोन लगाया है आपसे, काफी समय हो गया आपसे बातचीत नहीं हुई।
0: और बताइए कैसे हाल चाल है आप सबके?
1: जी हमारे हाल चाल अच्छे हैं, और आपके मिजाज कैसे हैं?
0: जी बिल्कुल बढ़िया है
1: जी। मौसम कैसा है आपके इधर?
0: मौसम बहुत ही साफ है, अभी तो बहुत ही खूबसूरत नजारा है तवांग का। कुछ दिन ही हुआ अब मौसम साफ हुए, इससे पहले तो पूरी तरफ कोहरा छाया हुआ था, लेकिन अब मौसम बहुत साफ
1: जी,
0: है।
1: जी अच्छा, खुशनुमा मौसम होगा।
0: खुशनुमा मौसम है और बहुत से पर्यटक अभी यहाँ पर तवांग में आए हुए हैं खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने के लिए। और आपके वहाँ पे जो मौसम है वो कैसा है?
1: हमारे इधर का मौसम तो इस वक्त 45 डिग्री पर लू चल रही है, गर्मी पड़ रही है जी। मैंने कहा काफी समय हो गया, आज अगले हफ्ते फोन लगाया था, फोन उठ गया लेकिन फोन कट गया बीच में से।
0: कभी कभी नेटवर्क का भी थोड़ा सा इश्यूज रहता है ना, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी।
1: जी जी, वो तो आपकी क्या गलती, वो सबका हल मोबाइलों का ही होता है, फोन कट जाता है
0: जी बिल्कुल,
1: तकनीकी खराबी की वजह से।
0: और बताइए मोहम्मद जी, मैं आपको कौन सा गीत आज पेश करूं?
1: गाना है औलाद के दुश्मन,
0: और गीत के बोल
1: उसमें से कुशा भी चला देना, सभी अच्छे गाने हैं।
0: और आपके साथ बताइए कौन कौन से दोस्त हैं जो इस गीत को सुनने वाले हैं आज?
1: जी प्रस्तुम कुमार हैं, और आप हैं
0: जी,
1: और जो दवा के श्रोता हैं सुनने वाले सबके लिए है
0: जी। चलिए मैं आप सबके लिए इस गीत को पेश करती हूँ। और मोहम्मद हारून जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैं आपकी फरमाइश को पेश करती हूँ।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल शामिल करने के लिए।
0: जी ये तो हमारे लिए ही खुश नसीबी है मोहम्मद हारून जी, कि हम आपकी फरमाइश को पेश कर पा रहे हैं।
1: जी जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, धन्यवाद।

0: हेलो नमस्कार
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते,
1: मैं भाईकन मुंडा बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सराजे सुनारी असम से।
0: जी जी भाईकन मुंडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए, आज आपको मैं कौन सा गीत सुनाऊँ?
1: फिल्म का नाम है एक लड़का एक लड़की
0: जी,
1: इसमें गाना है कितना प्यार तुम्हें करते हैं।
0: और बताइए, आपके साथ इस गीत को सुनने वाले आज कौन कौन है?
1: दोस्त है मेरे कमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, जुगेंद्र रंगपी, रमेश पत्र, रुण पत्र, ब्रिगेश नगनपुरी, सभी जो अभी आकाशवाणी तवांग सुन रहे सभी के लिए डेडिकेट रहेगा।
0: जी जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, तो मैं आपकी फरमाइश को पेश करती हूँ।
1: धन्यवाद।

0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं असम से अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ। तवांग का रेगुलर लिसनर हो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: रेगुलर कॉल भी करते रहते हैं और गाना फरमाइश करके गाना सुन के तो बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी,
1: हमारे असम में तो ऐसे ज्यादा ऐसे फरमाइश वाला प्रोग्राम हर रोज तो नहीं आता है। आप लोग की जैसा व्हाट्सएप का प्रोग्राम तो हर रोज आता है 8 बजे। हमारे असम में तो ऐसे वाला रेडियो स्टेशन नहीं ये बोल सकता है।
0: अच्छा अच्छा, वहाँ पर जो फरमाइशी जो प्रोग्राम है वो नहीं चलते है ना? ज्यादा
1: नहीं चलता है। असम में सब अलग अलग प्रोग्राम चलता है।
0: जी जी,
1: गानों का ऐसे रिक्वेस्ट प्रोग्राम ज्यादा नहीं करते हैं।
0: जी जी,
1: हफ्तों में एक बार दो बार ही आता है सिर्फ।
0: और मुझे ये सब जानकर बहुत खुशी होती है कि आप रेडियो में इतना लगाव रखते हैं और रेडियो को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं जितने भी प्रोग्राम आते हैं।
1: रेडियो
0: और
1: तो हमें प्यार देना ही पड़ेगा, लेकिन हमें रेडियो सुनते सुनते जो भी काम कर सकता है, जो मोबाइल टीवी वगैरह देखते हैं तो आंखें खोलना ही पड़ेगा। कुछ काम छोड़ के है उसको प्रोग्राम में शामिल होना पड़ता है, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। जो भी काम करता है रेडियो में पार्टिसिपेट कर सकते और आराम से सुनते रहिए, आपका काम भी चलते रहेगा।
0: जी जी, और आपकी जो फरमाइश है वो भी सुनते रहिए और जो ज्ञानवर्धक जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं आकाशवाणी के माध्यम से,
1: ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी सुनते हैं ना हम लोग।
0: जी जी, बहुत सारे प्रोग्राम्स है जैसे जो स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, स्वास्थ्य चर्चा, वो सब बहुत ही लाभदायक होता है। और बहुत से हमारे यहाँ के जो विभिन्न योजनाएं होते हैं सरकार हमारे लिए लाते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है ना?
1: मिलते हैं। पहले तो मीडियम पर सुनते थे प्रोग्राम को, अभी सुनने लगा है मोबाइल ऐप में।
0: जी जी बिल्कुल, न्यूज ऑन एयर ऐप हमारे भारत में कहीं भी हो आप हमारे जो कार्यक्रम है उसे सुन सकते हैं। और अमल बसुमतारी जी, बातों बातों में हम दोनों इतना खो गए कि हम आपकी फरमाइश लेना ही भूल गए।
1: ओहो सॉरी। फरमाइश मेरा एक रिश्ता फिल्म का जो उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज में जो हवा कह रही है घटा कह रही है, वो जो मोहब्बत से मोहब्बत है नई गाना, गीत को मेरे दोस्त भाईकोन मुंडा, विमल बसुमतारी, रमेश पत्र, जोगेंद्र रोंगटी और लकेंद्र वर्मा, कनक कुमार भट्टाचार्य, प्रेम सिंह सिसोदिया, सुनील झा, केसरी सिंह राजपूत, गजराज सिंह लजी, राकेश, इन सबको डेडिकेट रहेगा और खासकर आकाशवाणी तवांग के सभी अनाउंसमेंट के लिए।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अमल बसुमतारी जी, मैं आपकी फरमाइश को पेश करती हूँ।
1: जी, थैंक यू मैम,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्कार.
1: ओ टेस्टले मेडम
0: टेस्टलेला
1: तमजी सुइया फोन दितेला
0: लस लस नासियेला सिसम पुइगो सिनला
1: ओ मेन तो तुमरो न यो समस्या
0: लस लस गदा मोक्तो सुर पिम सिंग लानांग दोरेला
1: ओ नि मेन जों सुसु दो जेरम नि तार लंगे नंग कम तो खम देसु लो
0: नार गा पोच म हनी ला जिंग आरि तिंगे मांशिंग यि जुतला ये चिको गदा मोक्तो नाय गा पो खम दु जुनक नला
1: नारा से गम पोजम बनिदा
0: लस लस सिनला ला सिन दारा इनला लस ला नि पिम सिंग लांगे इना ग थुक्तना समुजित फितिशिंग यि शिकिनला सन्नासला लस ला टिचिना

जी हाँ तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हर बुधवार की सुबह 10 बजे हमें इस मोबाइल नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 6033914908। इसी जानकारी के साथ ही अब आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी अब यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय और इसी दिन। तब तक के लिए तकनीकी सहयोगी तानिंग ताको और शिखा देका के साथ अपने दोस्त सिटी म्याजिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसे संचालित कर रही थी सिटी म्यांगचिन। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार व 7:50 पर रीजनल न्यूज़।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया है। रोम में इटली के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक व्यवहारिक और भविष्य उन्मुख रूपरेखा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश शिपिंग, बंदरगाह आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में भी मिलकर कार्य करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी आयोजन

0: को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। बैठक के दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं प्रसिद्ध अभिनेता सुरेश गोपी ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के ईटानगर परिसर का दौरा किया, जिसका उद्देश्य संस्थान में मौजूदा आधारभूत संरचना की कमियों और लंबित कार्यों का आकलन करना रहा, जिन्हें बाद में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों तथा मेसर्स केनगर कंस्ट्रक्शन के साथ चल रही परियोजनाओं की स्थिति को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने संस्था की सभी और सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया तथा आधारभूत संरचना के समय पर पूर्ण होने में आ रही प्रगति और चुनौतियों का जायजा भी लिया। पूर्वोत्तर में ऑयल पाम के तीव्र विकास के लिए रणनीतिक समाधान विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्देश्य पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों और ऑयल पाम की खेती के तीव्र विस्तार के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण तैयार करने तथा केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत वनस्पति तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। कार्यशाला का संयुक्त रूप से आयोजन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ ऑयल पाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ICAR, IIOPR, केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। जिला प्रदर्शन विभागीय प्रगति तथा राज्य स्तर की नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले प्रमुख मुद्दों की समीक्षा के लिए आज पासीघाट स्थित DC कॉन्फ्रेंस हॉल में DDR सह DLMC समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला स्थिति, मानव संसाधन की स्थिति, प्रशासनिक ढांचा, मानसिक विभागीय समीक्षा, उपलब्धियां, समन्वय संबंधी समस्याएं तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। विभिन्न विभागों ने राज्य सरकार के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली प्रमुख चुनौतियों और आवश्यकताओं को भी प्रस्तुत किया है। समीक्षा बैठक में उठाई गई प्रमुख चिंताओं में विभिन्न विभागों के ग्रुप सी श्रेणी के पदों पर जनशक्ति की कमी भी शामिल रही। अरुणाचल प्रदेश साहित्यिक सोसाइटी APLS ने अरुणाचल प्रदेश में साहित्यिक और भाषा विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2026 का विमिनस लुमरदाई साहित्यिक पुरस्कार तोनी कोयू को प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये तानी लिपि के जनक है, जो अरुणाचल प्रदेश की तानी जनजाति के लिए विकसित पहली स्वदेशी लिपि है। उन्हें भारत ज्योति पुरस्कार, संस्कार भारती पुरस्कार, पेंगुइन पब्लिकेशन पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। लोहित यूथ लाइब्रेरीज ने आज तेजू स्थित बैम्बूसा लाइब्रेरी में अपने 19वें स्थापना दिवस का आयोजन किया। लोहित यूथ लाइब्रेरी आंदोलन के 19 वर्षों की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए वरिष्ठ स्वयंसेवक बानिका क्री ने इसके सिद्धांत, यदि पाठक पुस्तकों तक नहीं पहुंच सकते तो पुस्तकें पाठकों तक पहुंचनी चाहिए, को रेखांकित किया। उन्होंने कहा है कि इस पुस्तकालय आंदोलन ने कई स्वयंसेवकों के व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। और भारतीय सेना के स्पेयर कोर के अंतर्गत स्पेयर डिवीजन ने तुतिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सियांग फुटसल टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक समापन किया। 8 मई से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में आसपास के गांवों और शैक्षणिक संस्थानों की 12 पुरुष टीमें और 3 महिला टीमों ने सक्रिय भागीदारी की। शारीरिक फिटनेस, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धी और सेवाओं की सकारात्मक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस टूर्नामेंट में सीमावर्ती क्षेत्र के सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने और सामुदायिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। This is Akashwani Itanagar, the news read by Morgan Bagra. Prime Minister Modi announced that India and Italy had decided to upgrade their bilateral relationship to a special strategic partnership. During a joint press statement after the delegation-level talks with his Italian counterpart in Rome, the Prime Minister said the India-Italy Joint Strategic Plan 2025 to 2029 provides a practical and futuristic framework for bilateral ties. Mr. Modi said both sides held extensive discussions on enhancing cooperation and are working on establishing an India-Italy Innovation Center. He said

0: हिमाचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गुआ में तरानी। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो से एक देशभक्ति गीत। विजय प्रकाश और साथियों की आवाज में गीतकार है जावेद अख्तर व संगीत है AR रहमान का।

फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो के गीत के साथ कार्यक्रम क्वामे तराने यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आज और कल से। शब्द रचना है साहिर लुधियानवी की व संगीत है रवि का। इस गीत की हमें फरमाइश किए है उर्गिलिंग विकास नगर तवंग से। आप है लोफसंग तिंदा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म लाट साहब से मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना है हसरत जयपुरी के और संगीत है शंकर जयकिशन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है वारिंग खेरा पंजाब से। आप है मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोरा।

दिल ले गई ले गई ले गई एक चुलबुली चुलबुली नाजनी, दिल ले गई एक चुलबुली।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं, आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पगला कहीं का से। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है जलालाबाद वैसे आप है सूरज गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।

मदन मोहन ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है मजनू का टीला दिल्ली से आप है कमाल बलूजा, मधु बलूजा और सागर बलूजा, और सतना मध्य प्रदेश से आप हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे राजा मेहंदी अली खान द्वारा शब्द फिल्म नीला आकाश से। मोहम्मद रफी की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है।

श्रोताओं, आप सुन रहे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म आरजू से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है अनु मलिक ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है तोरोवल नवन शहर पंजाब से आप है गगनदीप ठंडी, तृप्ता कुमारी ठंडी, डॉक्टर प्रियंका ठंडी, डॉक्टर प्रशांत ठंडी, डॉक्टर प्रियम ठंडी।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस शुरू की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9।

नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की पूरी खबर और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेल की हर बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। कल राजस्थान रॉयल्स ने जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने सेपक टकराव विश्व कप के क्वाड्रेंट में रजत पदक अपने नाम किया। आर्सेनल एफसी ने प्रीमियर लीग फुटबॉल का खिताब जीता। रूपा बायन ने नौवीं एशियाई टाइकंडो पुमसे चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अश्मिता चाहिला, देविका सिहाग और मालविका बंसोड़ मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची।

0: आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अपने दोनों मैच जीतना भी चाहती है और उसके बाद उसको अन्य कुछ टीमों के परिणामों पर भी काफी हद तक निर्भर रहना पड़ेगा। और इससे पहले कल राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर जीत अपने नाम की। सुनते हैं इस मैच पर एक विस्तृत रिपोर्ट।
1: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल युवा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर गरजा। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज कर राजस्थान अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। इस जीत के साथ आरआर प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनने की सबसे मजबूत दावेदार बन रही है। मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। मिचेल मार्च ने जॉश इंग्लिस के साथ पहले विकेट के लिए 50 गेंदों में 109 रन की शानदार साझेदारी की। इंग्लिश 29 गेंद में 60 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद मिचेल मार्श थोड़े दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुए और सिर्फ 4 रन से शतक से चूक गए। मार्श ने 57 गेंद में 96 रन की पारी खेली। आरआर से यश राज ने 2 और जोफ्रा आर्चर ने 1 विकेट लिया। करो या मरो के मुकाबले में इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स को भी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 39 गेंदों में 75 रन की साझेदारी की। जायसवाल 23 गेंद में 43 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद सूर्यवंशी ने ध्रुव जुरेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 गेंद में 105 रन जुटाए और टीम की जीत की राह आसान कर दी। सूर्यवंशी ने 38 गेंद पर 10 छक्कों और 7 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ 93 रन की पारी खेली। इसके बाद ध्रुव जुरेल ने मोर्चा संभालते हुए 38 गेंद में 53 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। लखनऊ की ओर से आकाश महाराज और मोहसिन खान ने 1-1 विकेट लिए। वैभव सूर्यवंशी को उनके शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब अगर रॉयल्स की टीम 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत दर्ज करती है तो प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी और अंतिम टीम बन जाएगी, जबकि लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कहा जा सकता है कि वैभव की इस तूफानी पारी ने प्लेऑफ की दौड़ को और रोमांचक बना दिया। और प्लेऑफ के सभी समीकरणों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी कमल मौजूद हैं स्टूडियो में। कमल, अब तो इंतजार की इंतहा हो गई है और चौथी टीम अब तक आईपीएल को मिलती नजर नहीं आ रही है, क्या कहते हैं आपके समीकरण?
2: जी शक्ति, बिल्कुल, क्योंकि आईपीएल में जो जद्दोजहद इतने लंबे दिनों तक मैचों की होती है वो प्लेऑफ की ही रेस के लिए होती है, और प्लेऑफ की रेस के लिए हमारे सुनने वाले सभी इस बात को जानते ही हैं कि जो हमारी तीन टीमें हैं वो पहले ही इस प्लेऑफ में अपनी दावेदारी पूरी तरह से मजबूत कर चुकी हैं, लेकिन अब जो प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, वो है चौथे पायदान के लिए। तो चौथे पायदान में जो मजबूत दावेदार है, जैसा कि अभी हमने इस खास रिपोर्ट में भी प्रशांत जी की सुना कि जो कल का मैच रहा, हालिया जो राजस्थान रॉयल्स की जीत रही और 14 अंक उन्होंने इस जीत के साथ हासिल कर लिए हैं, तो सबसे मजबूत दावेदार तो वही समझी जा रही है। और उसके बाद जो और टीमें बचती हैं, जिसमें पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स, ये भी गणितीय रूप से तो अभी दावेदार बनती ही नजर आ रही हैं, क्योंकि 13 अंक हमारे पास अभी पंजाब किंग्स के हैं और चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के 12-12 अंक हैं। तो देखना होगा शक्ति कि कौन सी टीम वे दावेदारी करती है, लेकिन हाँ, राजस्थान रॉयल्स की दावेदारी अभी मजबूत नजर आ रही है। अगर हम ऊपर की टीमों की बात करें, तीन जो टीमें हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तो उनके 18 अंक हैं, सबसे ऊपर की जो मजबूत टीम है वो पहले ही समझी जा रही थी, और उनके प्रदर्शन के बाद अब उन्होंने अपनी मजबूत दावेदारी पहले नंबर पर हासिल की है। दूसरा जो सनराइजर्स हैदराबाद है, और उसके अलावा जो तीसरी टीम गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद है, ये दोनों टीमें बराबर बराबर 16-16 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर यानी बराबरी पर ही हैं। तो खैर, अब देखते हैं कि आगे आने वाला जो चौथा नंबर का पायदान है वो कितना रोमांचक होता है और कौन सी टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बनाती है।
0: जी बिल्कुल कमल, 5 मैच बचे हैं और चौथी टीम की तलाश है, तो दिन तो ज्यादा नहीं बचे हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि बहुत ही जल्दी इस सीजन को अपनी चौथी प्लेऑफ की टीम भी मिलते हुए नजर आएगी। और अब क्रिकेट के बाद चलते हैं एक ऐसे रोचक खेल की तरफ।

0: ने सबका ध्यान अपने उत्साह से अपनी तरफ मोड़ा है और भारतीय टीम ने कल कुआलालंपुर में सेपक टकराव विश्व कप के क्वाड्रेंट में रजत पदक जीत कर इतिहास रच दिया।
1: कुआलालंपुर के टिटवांगसा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत को भले ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम ने पूरी प्रतियोगिता में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत रजत पदक अपने नाम किया। भारत को हराकर मलेशिया ने पहली बार सेपेक टकराव विश्व कप के क्वाड्रेंट का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले खेले गए ग्रुप मुकाबले में भी मलेशिया ने भारत को हराया था। भारत को फाइनल मुकाबले में मलेशिया से 15-17 और 10-15 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ियों ने इस फाइनल मुकाबले में जुझारू प्रदर्शन दिखाया, लेकिन वे रजत पदक की चमक को सोने में बदलने में नाकाम रहे। हालांकि भारत ने पूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन दिखाया। भारत ने सेमीफाइनल में म्यांमार को 2-1 से हराया था, जबकि मलेशिया वियतनाम को हराकर फाइनल में पहुंची थी। वहीं क्वार्टर फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे पर 2-0 से जीत दर्ज की थी। किक वॉलीबॉल और फुट वॉलीबॉल के नाम से प्रचलित सेपक टकराव मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया का एक रोमांचक खेल माना जाता है। यह खेल वॉलीबॉल और फुटबॉल का एक अनूठा मिश्रण है, जिसमें खिलाड़ी हाथों का उपयोग किए बिना केवल अपने पैरों, घुटनों, छाती और सिर की मदद से गेंद को नेट के पार भेजते हैं, जहां मैदान पर खिलाड़ियों की ऊर्जा, संतुलन और शरीर के लचीलेपन का एक शानदार तालमेल देखने को मिलता है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: जी, एक शानदार तालमेल जहां खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, हुनर और टैलेंट का भी तालमेल दिखाते हैं, और ऐसा ही कुछ तालमेल कल फुटबॉल के मैदान पर देखने को मिला, जहां आर्सेनल एफसी ने प्रीमियर लीग फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। सुनते हैं आर्सेनल की जीत पर ये डिटेल्ड रिपोर्ट।
2: आर्सेनल ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। मैनचेस्टर सिटी और बॉर्नमर्थ के बीच कल 1-1 से मैच ड्रॉ होने के बाद आर्सेनल को विजेता घोषित किया गया। कल इंग्लैंड के वाइटालिटी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पेप गार्डियोला की टीम को खिताब रेस में बने रहने के लिए हर हाल में जीत चाहिए थी, लेकिन बॉर्नमर्थ के शानदार प्रदर्शन ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैच का सबसे अहम पल 39वें मिनट में आया, जब 19 वर्षीय फ्रेंच खिलाड़ी एली जूनियर क्रूपी ने शानदार गोल कर बॉर्नमर्थ को बढ़त दिलाई। एड्रियन ट्रफर्ट के पास पर क्रूपी ने बेहतरीन पहला टच लिया और फिर एक कर्विंग शॉट लगाकर गेंद को गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया। एर्लिंग हॉलैंड ने बराबरी का गोल कर सिटी की वापसी के साथ ही जीत की उम्मीदें जगाई थी, लेकिन मैनचेस्टर की खुशी अधिक समय तक नहीं रह सकी। कुछ ही सेकंड बाद मैच समाप्त होने की घोषणा हुई। आर्सेनल और मैनचेस्टर को अब 1-1 मुकाबला और खेलना है, लेकिन 4 अंकों की बढ़त के कारण आर्सेनल को विजेता घोषित कर दिया गया है। आर्सेनल के मुकाबला हारने या मैनचेस्टर के मुकाबला जीतने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिकेल आर्टेटा की अगुवाई में आर्सेनल ने शानदार खेल दिखाया। सीजन में आर्सेनल ने कॉर्नर से सबसे ज्यादा गोल करने का प्रीमियर लीग रिकॉर्ड भी बनाया। मैनचेस्टर सिटी और बॉर्नमर्थ के बीच हुए मैच के ड्रॉ होने की खबर आते ही एमिरेट्स स्टेडियम के बाहर हजारों आर्सेनल समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अब आर्टेटा की टीम के पास इतिहास रचने का एक और मौका है। आर्सेनल 30 मई को बुडापेस्ट में यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल 2025 में पेरिस सेंट जर्मेन एफसी से मुकाबला करेगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो यही फुटबॉल की लीग की वो दुनिया है, जहां पे रोज सैकड़ों कीर्तिमान बनते हैं और सैकड़ों कीर्तिमान टूटते हैं। और अब फुटबॉल के बाद चलते हैं बैडमिंटन की तरफ, जहां मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में भारत के लिए आज का दिन कुछ अच्छे परिणाम लेकर आता हुआ नहीं नजर आया। और अगर देखा जाए तो अश्मिता चाहिला, देविका सिहाग और मालविका बंसोड प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। हालांकि भारत की मुख्य उम्मीद लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय का सफर आज इस प्रतियोगिता में समाप्त हो गया। और अब इस उम्मीदों की डोर को लेकर चलते हैं उलान बटोर की तरफ, जहां रूपा बायर ने मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित 9वीं एशियाई टाइकेंडो पुमसे चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस पदक के साथ बायर ने एशियाई टाइकेंडो चैंपियनशिप में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस शानदार पदक के साथ रूपा ने एक और उपलब्धि हासिल की है कि वे एशियाई खेलों 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर गई हैं। इस उपलब्धि के बाद हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला ने रूपा से बातचीत की, जहां रूपा ने इस प्रतियोगिता के दौरान अपने अनुभव हमसे साझा किए।
3: नमस्कार रूपा जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते, थैंक यू।
0: इन नाइन्थ एशियन ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप्स में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इसके लिए आपको बधाई।
1: थैंक यू सो मच आप सभी को।
0: किस तरीके का आपका अनुभव रहा जब आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता?
1: एक्सपीरियंस तो मेरा काफी अच्छा रहा था, क्योंकि मैंने बैक टू बैक इस बार मारा था। मैंने 2008 एशियन चैंपियनशिप में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल मारा था, और आफ्टर 2 ईयर्स बैक अब ये 9 एशियन चैंपियनशिप में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल मारा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो और मेरा कॉन्फिडेंट लगता है नेक्स्ट टाइम और मैं अच्छे कर सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा ऐसा फील बहुत अच्छा आ रहा है।
0: किस तरीके से आपकी तैयारी रही है?
1: तैयारी तो मेरे लिए बहुत लंबा प्रोसेस था, बट इसमें मेरा सिर्फ फिजिकल या मेंटल सिर्फ नहीं था, मेरा बहुत और बहुत जनों का कंट्रीब्यूट भी था, क्योंकि मेरे लिए भी ये आसान नहीं था, इजी नहीं था इतना लंबा जो आना, तो इसीलिए उसपे काफी मेहनत रहा है मेरा कोच का, और हमारा फोकस एक जगह पे टिका रहा कि हमें ये करना है।
0: आप थोड़ा सा ताइक्वांडो खेल के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरीके से ये खेल बाकी खेलों से अलग है।
1: ताइक्वांडो जो है कोरिया का नेशनल गेम्स है, इसमें डिफरेंट वही है कि ताइक्वांडो में क्यूरिगी और पुमसे जो है डिफरेंट वही है कि क्यूरिगी में वो फाइटिंग होता है, एक दूसरे को फाइट करता है, बट पुमसे का डिफरेंट वही है कि हम परफॉर्म करता है एक दूसरे में।
0: इस साल आपको एशियन गेम्स भी खेलने हैं, तो किस तरीके की आपकी तैयारी है?
1: अभी तो फिलहाल मेरा तैयारी है, वापस जाएंगे इंडिया जाने के बाद मेरा तैयारी तो 21 से मैंने स्टार्ट कर दिया था, 2021 से। अभी होपफुली हमारे जो प्लानिंग का हिसाब से अभी होंगे तो और अच्छा रहेंगे। अभी जाएंगे वापस, फिर वापस अपना ट्रेनिंग चालू करेंगे, तो अपना जो प्लानिंग है शेड्यूल है उस हिसाब से करेंगे, तो उसके लिए और ज्यादा मुझे डबल काम करना है।
0: आपकी ट्रेनिंग और तैयारियों के लिए सरकार आपकी किस तरीके से मदद कर रही है?
1: भारत सरकार मुझे काफी हेल्प कर रहा है, क्योंकि मुझे अभी हमारे लिए सबसे वो होता है कि फाइनेंशियल में मुझे काफी इश्यू होता है, तो हम चैंपियनशिप में आना जाना, मुझे रहना खाना और मुझे ट्रैवल करना या टिकट, ये सब में काफी हेल्प कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत थैंक यू हूँ।
2: जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका भी रूपा। और स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम से जुड़ी आप और आपने अपने अनुभव साझा किए, और ये दूसरा मौका है जब आप जुड़ी हैं और ये दूसरी उपलब्धि है जब आप हमारे साथ जुड़ी इस कार्यक्रम में, और हमें उम्मीद होगी कि आप आगे भी ऐसे ही कुछ और पदक जिनकी चमक इससे और ज्यादा उज्ज्वल हो उनके साथ देश का नाम रोशन करें और हमारे कार्यक्रम के साथ अपने अनुभव साझा करती रहें। और इसी तरह की एक उपलब्धि हॉकी की फील्ड से कोच बलदेव सिंह ने हासिल की है, जिनको 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत करेंगी। 75 वर्षीय बलदेव ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के पास स्थित एक छोटे से शहर शाहबाद मारकंडा को हॉकी का एक एपिसेंटर बना दिया है, जहां से खिलाड़ी आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ओलंपिक पे, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और शानदार प्रदर्शन लेकर के इस लजिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इन पे भी बात की जाएगी हमारे आने वाले अंक में। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com यानी sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग

0: विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96 रुपए और 83 पैसे पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15

0: 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज। ही सेड बोथ साइड्स आर वर्किंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग एन इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर एंड नोटेड दैट द इंडिया इटली डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप हैज ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन इन द डिफेंस सेक्टर।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our time, setting rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
0: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization FAO at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists and workers. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
0: The Agricola Medal is the highest honor conferred by the Director General of the FAO. It is awarded to distinguished world leaders and